सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। इस समय सुबह के ठीक 5:58 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित

0: विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिन कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए वंदना कार्यक्रम।

गुरु नानक देव जी का कथन है कि अस्वच्छ और गंदा शरीर पानी से साफ किया जाता है, मैले वस्त्र साबुन से धोने पर साफ होते हैं। ऐसे ही दूषित मन की अशुद्धता प्रभु के सिमरन से ही दूर होती है। मन की सभी बुराइयों को दूर करने और उसे आध्यात्म की ओर ले प्रेरित करने के लिए नाम का अभ्यास तथा प्रभु की निस्वार्थ सेवा से बढ़कर प्रभावकारी अन्य कोई साधन नहीं है। और जब तक मन में दूषित विचार उत्पन्न होते रहेंगे, तब तक सुख या आनंद प्राप्त नहीं हो सकते। अज्ञानतावश मन इंद्रिय जनित विषयों में ही खुशी अनुभव करता है। वो अपने अंदर ही निहित नित्य सुख और शांति की प्राप्ति के लिए अपने अंदर नहीं झांकता। ईश्वर और संसार दोनों उसके ना मन से ही हैं, और ये जब दोनों मन में ही हैं तो बाहर ढूंढने का क्या मतलब। परंतु जब जीव संसार की ओर अपनी पीठ कर लेता है, तभी वो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। परमात्मा तभी साक्षात्कार होता है उनका, जब हम संसार की मोह माया काम क्रोध ईर्ष्या को छोड़ देते हैं। तो आइए हम भी इन सभी विकारों को छोड़ें और परमात्मा का साक्षात्कार करने की कोशिश करें। ज्ञान ज्योति। और अब आइए वंदना कार्यक्रम में भजनों की शुरुआत करें।

जी हाँ, ईश्वर तो हमारे अंदर ही है, परंतु हम उसे देखने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारा मन काम वासनाओं से भरा हुआ है। गंदे आसन पर भला भगवान को कैसे बिठाया जा सकता है? जब तक ईश्वर का मंदिर यानी कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और दूषित विचारों का पर्दा उठाया नहीं जाएगा, तब तक प्रकाश पुंज ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे।

0: दिल का भंवर करे।
1: आकाशवाणी हमीरपुर से इस समय वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। समय आपको बताएं, सुबह के 6:29 हुए हैं। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अगली प्रस्तुति आइए सुनते हैं।

वंदना कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 6:40 हुए हैं और भक्ति क्रम में यूं ही आगे बढ़ते हुए आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ भाग 403।

पुण्यात्मा काकभुशुंडी से श्री रामचरित मानस तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनकर गरुड़ कृतकृत्य हो गए। अब उनके इस आश्रम से विदा होने की घड़ी आ पहुंची थी, किंतु विदा होने से पहले वे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहते थे। ये 7 प्रश्न थे। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? संत और असंत का भेद, सबसे महान पुण्य, सबसे भयंकर पाप और मानस रोग कौन से हैं? काकभुशुंडी ने उत्तर दिए, सबसे दुर्लभ मानव शरीर है और अभागे हैं वे जो इसे पाकर हरि भजन नहीं करते। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। संत मिलन के समान अन्य सुख नहीं है। संत परोपकार करते हुए दुख स्वीकार कर लेते हैं और असंत दूसरों को दुख देने में सुख का अनुभव करते हैं। वेदों ने अहिंसा को परम धर्म अर्थात सबसे महान पुण्य बताया है और पर निंदा को घोर पाप। सभी प्रकार के मानस रोगों की जड़ है मोह अथवा अज्ञान, क्योंकि इसी से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर और साथी थे। सुबह के 6:51 हुए हैं। अब आइए, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद 6:55 पर संस्कृत समाचार, 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम सुबह 7:05 पर आप सुन सकते हैं। समाचार प्रभात का अंक सुबह 8:15 पर, मॉर्निंग न्यूज़ का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा और हिमाचल डायरी का आज का अंक आज सुबह 8:30 पर सुनिएगा। 8:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा और आज के इस कार्यक्रम में मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स के ऊपर चर्चा की जाएगी। डॉक्टर दिव्वी से अंजु शर्मा की बातचीत आप सुनेंगे। सुबह 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 9:30 से 10 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम और सुबह 10 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 10:05 पर लघु वार्ता होगी और 10:15 पर कार्यक्रम सुनेगा एक ही शीर्षक से। लोकरंग कार्यक्रम 10:45 पर प्रसारित किया जाएगा। सुबह 11 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 11:05 से लेकर दोपहर 12 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं। दोपहर 12 बजे देवधरा के लोकगीत लेकर हाजिर होंगे। 12:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम। इसी दौरान 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से और 3 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। शाम 5 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 5:05 पर भजन संध्या कार्यक्रम होगा। युव मंच कार्यक्रम 5:30 पर आप सुन सकते हैं। 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। सफर सुहाने गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम शाम 6:05 पर सुनिएगा। 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा किसान वाणी। 7 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम 7:05 पर प्रसारित किया जाएगा। 7:25 का समय रहता है रौनकां ग्राइंदियां कार्यक्रम का। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 8 बजे से 8:45 तक विविध भारती के कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं। 8:45 पर समाचार संध्या का अंक, 9 बजे News@9 का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा और 10 बजे रंगे गजल कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 10:30 पर सुनिएगा चांदनी रातें कार्यक्रम और रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। जी तो ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी पहले संस्कृत में और उसके बाद 7 बजे हिंदी में।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनान्तर्गतं अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्तवक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्तराष्ट्रसङ्घे तथा यूरोपीयसङ्घे च निर्दिष्टानाम् आतङ्कवादिनाम् आतङ्किसङ्घटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषत्प्रतिबन्धसमित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतङ्किसङ्घटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्य 21वें रोजगारमेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीयमाध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरम् आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारतपर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्रीरूबियो वर्येण मदर टेरेसावर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरियास्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरूबियो राष्ट्रियराजधान्यां विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरूबियोवर्यः आगरा जयपुरनगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतुविभागेन अद्य पूर्वीय मध्यप्रदेशे पूर्वीय उत्तरप्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरङ्गस्य स्थित्याम् आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आन्ध्रप्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्यप्रदेशे, पश्चिम उत्तरप्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45°C यावत्, न्यूनतम तापमानं 27°C यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, द न्यूज रेड बाय
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: है द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:07:30 हुए हैं और आपकी रेडियो दोस्त भावना कतना हाजिर है आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम लेकर। तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, और आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से विचार के साथ, क्योंकि विचार हमारी सोच को बदलता है, सोच हमारे व्यवहार को बदलती है, और जब हमारा व्यवहार बदलता है हम खुद बदलते हैं, तो लोग भी बदलते हैं, समाज बदलता है ना। तो अच्छे विचार अपने दिमाग में रखने चाहिए। और आज हम जिस विचार की बात कर रहे हैं, देखिए आजकल ना हम हमेशा आज की बात को कल पे टालते हैं, कल की बात को परसों पे टाल देते हैं कि भाई चलो कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, और वैसे भी गर्मियों के दिन थोड़े सुस्ती के दिन होते हैं तो मन करता है कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद ही काम कर लेंगे। पर जब काम टालने की आदत हो जाती है ना, तब वो काम इकट्ठे होते जाते हैं, और जब काम पूरे नहीं होते समय पर तो तनाव हमें ही होता है, और तनाव होने से क्या क्या होता है वो तो आप सब जानते ही हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक नगर में नमक का व्यापारी रहता था। वो रोज सुबह अपने गधे पर नमक की बोरियां लादकर पास के कस्बे में बेचने जाता था। एक दिन एक नदी पार करते समय गधा पानी में गिर पड़ा। उसकी पीठ पर लदा नमक जो था ना, वो सब पानी में घुल के बह गया और उसका बोझ जो है वो हल्का हो गया। गधे ने सोचा अगर वो रोज ऐसा करेगा तो उसे कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसके बाद वो जानबूझकर नदी में गिरने लगा, जिससे उसका बोझ तो कम हो जाता था, सारा नमक पानी में बह जाता था, लेकिन व्यापारी को भारी नुकसान होने लगा। जल्द ही व्यापारी ने गधे की चालाकी समझ ली। उसने एक दिन क्या किया, नमक की जगह गधे की पीठ पर रुई के गट्ठर लाद दिए। अब गधा हल्का बोझ देखकर खुश हुआ और पहले की तरह नदी में गिर गया। लेकिन भाई अब तो नमक की जगह रुई थी, रुई ने पानी सोख लिया और उसका बोझ कई गुना बढ़ गया। तब जाकर गधे को अपनी गलती समझ आई। जी अब स्टोरी का मोरल क्या है, काम चोरी भले ही उस समय आराम दे, तत्कालिक आराम दे, लेकिन अंत में नुकसान ही पहुंचाती है। जैसे कि गधा, थोड़े दिन उसको आराम हुआ जब नमक बह गया पानी में, लेकिन जब रुई के गट्ठर भारी हुए तब उसे एहसास हुआ कि भाई नहीं, रोज रोज ऐसा करने से नुकसान जो है वो हमें ही होता है। इसीलिए दोस्तों कभी कभार होता है कि आपका मन नहीं है काम करने का, यो कोई मजबूरी है, तब ठीक है काम को टाल सकते हैं, लेकिन रोज अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आदत बन जाती है और ये आदत हमारे लिए ही दुखदायी साबित होती है आगे चलकर। इसीलिए हर काम अपना स्वयं करें, समय पर करें और जिंदगी में खुश रहिए, क्योंकि प्यार विश्वास उसी को मिलता है जो हर काम अपना समय पर पूरा करता है। और हम भी समय पर आपको ये गीत सुनाएंगे, आइए मिलकर सुनें।

0: तेरे घर के सामने। जी हाँ, इसी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के सुरीली सी आवाज़ में। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। समय आपको बताएं सुबह के 7:14:30। आइए आगे बढ़ते हैं, इतिहास की चर्चा करते हैं, इतिहास पे बातें करते हैं, पर इस अंतराल के बाद।
1: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
2: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
1: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
2: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: जी दोस्तों, तो आज 23 मई का दिन है और आज के दिन के साथ कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, आइए आपको बताते हैं।

जी बात करें 1805 की, तो 23 मई 1805 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने एक आदेश के अंतर्गत दिल्ली के मुगल बादशाह के लिए एक स्थायी प्रावधान की व्यवस्था की थी।

आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी ने 1889 में पहली बार अमेरिका में पशु चिकित्सा स्कूल स्थापित किया था। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली ने ऑस्ट्रिया हंगरी तथा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी और 1923 में बेल्जियम ने सेवना एयरलाइंस बनाया था। आज ही के दिन पश्चिम जर्मनी संविधान को अंगीकार करने के बाद 1949 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था। बछेंद्री पाल 1984 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला आज ही के दिन बनी थी। जी हां, 23 मई 1984 को। अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारी प्रतिबंधों के प्रस्ताव पर 1986 में वीटो किया था और पाकिस्तान का भारत को MFN का दर्जा देने से पुनः इनकार 2001 में किया गया था। आज ही के दिन कांस फिल्म समारोह में अपिचा तपांग वीरा सेताकुल द्वारा निर्देशित थाईलैंड की फिल्म अंकल बोनमी हु कैन रिकॉल हिज पास्ट लाइव्स को सबसे बड़े पुरस्कार पाम डोर से सम्मानित वर्ष 2010 में किया गया था। मुख्य न्यायाधीश केची बालकृष्णन की अध्यक्षता में भारत के उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ के ने बिना विवाह किए महिला और पुरुष का एक साथ रहना वर्ष 2010 में अपराध नहीं माना था। सर्च इंजन गूगल ने अपने प्रोजेक्ट भवन के उपयोग के लिए मकानी 2013 में शक्ति हासिल की थी। और रूस और चीन ने सीरिया में युद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति का प्रयोग वर्ष 2014 में किया था। आज ही के दिन 23 मई को भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में इसे पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल RLV-TD को 2016 में लॉन्च किया था। और आज के दिन को यानी कि 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी और इसे अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इस दिन को एक वार्षिक आयोजन के रूप में बनाया गया ताकि लोग कछुओं और उनके लुप्त होते आवासों का जो है वो उनकी रक्षा कर सकें, उनको बचा सकें और साथ ही उनके जीवित रहने और फलने फूलने में मदद करने के लिए मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहित कर सकें। जी हाँ, कछुओं के बारे में हम आपको बताएं, कछुए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके दिशा का पता लगाते हैं और अपने बच्चों को पालने के लिए उसी समुद्र तट पर लौट आते हैं जहाँ वो पैदा हुए थे। तटीय इलाकों में अपने भोजन स्थलों और समुद्र तटों पर स्थित अपने घोंसले बनाने के स्थानों के बीच यात्रा करते समय कछुए उन आवश्यक पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं जो इन पारिस्थितिकी तंत्रों को फलने फूलने में मदद करते हैं। आपको बताएं, कछुए के खोल 50 अलग अलग हड्डियों से बने होते हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं और जुड़ जाती हैं। आभूषण और संग्रहणीय वस्तुओं के रूप में इनकी लोकप्रियता ने 18वीं शताब्दी से ही कछुओं के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। जी हाँ, देखिए, आधुनिक समय में कछुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरे अवैध वन्य जीव व्यापार, पारंपरिक चिकित्सा में कछुओं का उपयोग और आकस्मिक पकड़ है। तो हमने विलुप्त होते कछुए की प्रजातियों को बचाना है और प्रयास करना है कि हम समुद्र में प्लास्टिक ना पहुंचाएं, क्योंकि प्लास्टिक की बड़ी संख्या, प्लास्टिक का कचरा समुद्र में पहुंच रहा है, इसी वजह से भी कछुओं को नुकसान पहुंच रहा है। तो विश्व कछुआ दिवस मनाने का यही उद्देश्य है कि हम इनकी प्रजातियों को बचाएं।

और आज के दिन को 23 मई को एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला। प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने के लिए हर साल 23 मई को ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसका इलाज सुनिश्चित करना और महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करना है। आपको बताएं, प्रसूति फिस्टुला क्या है? ये प्रसव यानी कि लेबर के दौरान होने वाली सबसे गंभीर और दुखद चोटों में से एक है। ये जन्म नलिका और मूत्राशय या फिर मलाशय के बीच एक छेद होता है जो लंबे और कठिन प्रसव के कारण उचित चिकित्सा ना मिलने पर होता है और इसके कारण महिलाओं को लगातार मूत्र या फिर मल रिसाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बीमारी मुख्य रूप से गरीब और दूर दराज के इलाकों की महिलाओं को प्रभावित करता है, जैसे कि कम उम्र में गर्भावस्था या फिर प्रसव, उचित और आपातकालीन प्रसूति देखभाल की कमी और लंबे समय तक रुका हुआ प्रसव और कुपोषण इसका मुख्य कारण है। और इसकी रोकथाम के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल और दाइयों की सहायता और बाल विवाह पर रोक लगाकर इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है और सर्जरी या फिर शल्य चिकित्सा के माध्यम से फिस्टुला का सफल इलाज किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले हमें इसको रोकना है, जागरूकता लानी है, तभी हम इससे बच सकते हैं। चलिए, 23 मई को मनाए जाने वाले दिवस और इतिहास की बातें हमने आपके साथ साझा की, अब एक गीत आइए सुन लेते हैं।

0: नील कमल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। एक अंतराल, उसके बाद समाचार पत्रों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: दस लाख की लॉटरी मुझे,
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुँच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
8: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: जी, सुबह के 7:30 हुए हैं 30 सेकंड, और अब आइए समाचार पत्रों से ताज़ा तरीन खबरों की बातें करते हैं।

सबसे पहली खबर की हम बात करें तो देश के इतिहास में संभवतः पहली बार है जब किसी बड़ी परीक्षा में कॉपी दोबारा जचवाने के लिए आवेदन करने वाले 7% से ज़्यादा हो गए हैं। जी हाँ, CBSE 12वीं के नतीजों के पुनर्मूल्यांकन के लिए शुरुआती 3 घंटे में ही करीब 1.26 लाख आवेदन आए थे और इस बार कुल 17.68 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। ताज्जुब ये है कि इसके बाद बोर्ड ने ये आंकड़े अपडेट करने ही बंद कर दिए। पिछले सालों पर नजर डालें तो ये आंकड़ा 2-3% होता था। बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 24 मई कर दी है। बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह ने कहा कि वेबसाइट पर अनधिकृत हस्तक्षेप के प्रयास हुए हैं, इसीलिए छात्रों की असुविधा को देखते हुए तारीख बढ़ाई है। उन्होंने माना कि अभी तक जारी 1,27,146 स्कैन आंसर शीट में से 6 पेज धुंधले सामने आए हैं, मगर उनकी आईडी भी साफ नहीं है, इसीलिए इन्हें जांचा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा, धुंधली आंसर शीट वाले मामले उन 13,000

583 कॉपी में से भी नहीं है क्योंकि वे स्कैन नहीं हो पाई थी। कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा आतंकी सैफुल्लाह उर्फ सैफुल्लाह साजिद जट उर्फ लंगड़ा था। तेलंगाना के निर्मल जिले में मक्का यानी कि भुट्टे से केदारनाथ मंदिर की विशाल प्रतिकृति तैयार की गई है। कॉर्न केदारनाथ मंदिर की बाहरी दीवारों और छत को सजाने के लिए हजारों पीले भुट्टों का इस्तेमाल किया गया। प्रतिकृति के भीतर बकायदा शिवलिंग स्थापित किया गया। यहाँ लोग पूजा अर्चना के लिए भी पहुँच रहे हैं और ये मंदिर एक कृषि प्रदर्शनी का हिस्सा है। इस अनूठे मंदिर के दर्शन के लिए आसपास के सैकड़ों किसान और आम लोग पहुँच रहे हैं। भुट्टे से मंदिर की प्रतिकृति को तैयार करने में 1 महीना लगा और ये करीब 1 हफ्ते इसी तरह बना रहेगा।

अगली खबर के बारे में बात करें तो हॉर्मुज संकट के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से 26 मई तक भारत दौरे पर रहेंगे। वे आगरा, जयपुर, कोलकाता और नई दिल्ली जाएंगे। 26 मई को दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। बैठक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। RBI केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड देगा। ये फैसला गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड की 623वीं बैठक में हुआ। डिविडेंड यानी RBI की कमाई, खर्च और जरूरी रिजर्व अलग रखने के बाद बची रकम जो सरकार को दी जाती है।

भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिकी वैमानिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान AIAA द्वारा 2026 का सबसे प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया गया है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ये क्षेत्र वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और सतह स्तर पर इसकी पहले कभी खोज नहीं की गई थी। इस मिशन ने चंद्रमा पर भविष्य के मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण डाटा प्रदान किया और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय मिट्टी में प्रमुख रासायनिक तत्वों की उपस्थिति की पुष्टि की। ये भविष्य में चंद्रमा की सतह पर विनिर्माण कार्यों को बनाए रखने का संकेत देते हैं। भारत के अमेरिकी राजदूत विनय क्वात्रा ने AIAA एसेंड 2026 सम्मेलन में इसरो के लिए ये पुरस्कार स्वीकार किया। प्रशस्ति पत्र के अनुसार इसरो को ये पुरस्कार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के निकट चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए दिया गया है, जिससे चंद्रमा की हमारी समझ बेहतर करने में मदद मिली और नई सोच विकसित हुई। जी हाँ, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए AIAA द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और ये पुरस्कार किसी व्यक्ति या टीम को प्रदान किया जाता है। टीम नामांकन में योगदानकर्ताओं की सूची शामिल होती है, जिनमें से अधिकतम 2 को पुरस्कार औपचारिक रूप से स्वीकार करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है। और अब बात करें मौसम की, तो भीषण गर्मी झेल रहे भारत में शुक्रवार सुबह असामान्य रिकॉर्ड दर्ज किया गया। दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों की सूची में सभी शहर भारत के रहे। एयर क्वालिटी और मौसम ट्रैकर AQI इन के मुताबिक सुबह 10:50 बजे ओडिशा का बलांगीर 45 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। इसके बाद चंद्रपुर और प्रयागराज में 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ही

हरियाणा और तेलंगाना के कई शहर दोपहर से पहले ही 42 से 44 डिग्री तक पहुंच गए। अकेले उत्तर प्रदेश के 22 शहर गर्म शहरों की सूची में थे। करीब 22 शहर बड़े शहरों का तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया, यानी कि इन शहरों में भीषण लू की स्थिति बनी रही। दोपहर होते होते बांदा में 47.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और भारत मध्य भारत में अगले कुछ दिन गंभीर हीट वेव की चेतावनी जो है वो जारी की है। कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जो है वो जताई है। ओडिशा से लेकर विदर्भ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैले इलाके में विशाल हीट डोम जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं, साफ आसमान और मानसून से पहले की आंधी बारिश में देरी के कारण हालात और गंभीर हुए हैं। बात करें हिमाचल की तो करीब एक सप्ताह से भीषण गर्मी के बाद लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश से लोगों को राहत मिली है। एक दिन पहले जहां प्रदेश में कई मैदानी क्षेत्रों में 45 डिग्री तापमान की तप रहे थे वो, वहीं शुक्रवार को पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के दौरान और मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश से तापमान 5 से 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। और आगे के लिए बताया गया है मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। 23 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में आंधी और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 24 और 25 मई को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और सोलन के कुछ क्षेत्रों में 26 मई के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। जी, ये कुछ खास खबरें समाचार पत्रों से हमने आप तक पहुंचाई। और अब कार्यक्रम में आइए एक गीत सुन लेते हैं।

किशोर कुमार और साथियों का गाया ये गीत था, मोहब्बत फिल्म का नाम था। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। इस समय आपको बताएं सुबह के 7:45 हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, खेल खबरों को समाचार पत्रों से कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जी, सबसे पहली खबर की हम बात करें तो कल हुए मैच की बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद शुक्रवार रात को दोनों के बीच खेले गए मैच की बेहद अहमियत थी। दरअसल इस मैच पर अंक तालिका में पहले दो स्थान पर रहकर प्लेऑफ में पहुंचने का दारोमदार टिका हुआ था। हैदराबाद अच्छे अंतर से जीतकर गुजरात टाइटन्स को नेट रन रेट में पछाड़ सकती थी, जबकि बेंगलुरु मैच को जीतकर सबसे ज्यादा अंकों के साथ नंबर वन पर बरकरार रहते हुए सीधे फाइनल में पहुंच सकती थी। हैदराबाद ने लक्ष्य पाने को पूरी जान लगा दी। जी हां, बेंगलुरु के सामने 256 रन का लक्ष्य रखा, लेकिन बेंगलुरु उस लक्ष्य को नहीं भेद पाई और सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हरा दिया। और आईपीएल में धमाकेदार आगाज करने के बाद लगातार 6 मुकाबलों में हार के साथ पंजाब के लिए प्लेऑफ की डगर बेहद मुश्किल हो गई है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ शनिवार को यानी कि आज होने वाले मुकाबले में टीम को न सिर्फ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, बल्कि 24 मई को मुंबई के खिलाफ होने वाले मुकाबले में राजस्थान टीम की हार का की कमान भी करनी होगी। दूसरी ओर लंबे समय से अंक तालिका में अंतिम पायदान पर मौजूद लखनऊ की टीम घरेलू मैदान में अपनी साख बचाने के लिए जीतना चाहेगी। जी, अगली खेल खबर की बात हम करें तो

0: टाटा दौड़ 100 मीटर में शुक्रवार को दो बार कुछ ही मिनटों के भीतर दो राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे। जी हां, यहां चल रही सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दौरान गुरिंदर वीर सिंह ने अनिमेश कुजूर के 10 माह पहले बनाए 10.18 सेकंड के रिकॉर्ड को 10.17 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पूरी कर तोड़ दिया। गुरिंदर वीर ने ये उपलब्धि पहली सेमीफाइनल हीट के दौरान हासिल की, लेकिन उनका ये रिकॉर्ड कुछ मिनटों में ही टूट गया। सेमीफाइनल की दूसरी हीट में अनिमेश ने 10.15 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पूरी कर अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड फिर से हासिल कर लिया। दौड़ का फाइनल शनिवार को यानी कि आज होगा। अगली खेल खबर की बात हम करें तो बैडमिंटन की है। मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन में भारतीय शटलर अश्मिता चालिहा का सफर क्वार्टर फाइनल में हार के साथ समाप्त हो गया। घुटने की चोट के कारण 8 महीने बाद कोर्ट पर वापसी कर रही 71वीं रैंक की अश्मिता को डेनमार्क की वर्ल्ड नंबर 23 लाइन होजमार्क ने 21-23, 21-18, 21-11 से शिकस्त दी। अश्मिता ने पहला गेम जीतकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अगले दोनों गेम गंवाकर बाहर हो गई। जी, ये कुछ खास खेल खबरें थी जो हमने आपके साथ साझा की। अब एक अंतराल, उसके बाद विज्ञान पर चर्चा करेंगे।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है और सुबह के 7:50 हुए हैं। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अब आइए विज्ञान पर चर्चा कर लेते हैं। और इसमें विज्ञान पर कुछ जो वैज्ञानिक है वो हमारे शोध जो करते रहते हैं, और उस शोध में उन्होंने ये बताया है कि संकट में खुद को तीसरे व्यक्ति की तरह संबोधित करने से घबराहट और चिंता जो है वो दूर होती है। मुश्किल हालात में मैं की जगह खुद का नाम लेकर अगर हम अपने आप से बात करें तो इससे तनाव घटता है और प्रदर्शन भी ठीक होता है। जी हाँ, नौकरी का इंटरव्यू हो, स्टेज पर कोई बड़ा प्रेजेंटेशन हो या फिर जिंदगी का कोई मुश्किल इम्तिहान, एन वक्त पर दिल की धड़कनें तेज होना और हाथ पैर कांपना आम बात है। ऐसे सामाजिक और मानसिक दबाव के क्षणों में अमूमन हमारे भीतर एक संवाद चलता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, अगर मुझसे गलती हो गई तो क्या होगा। तो मनोविज्ञान की नई रिसर्च कहती है कि संकट के इन पलों में मैं या फिर मुझे जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपके तनाव को कई गुना बढ़ा देता है। इसके विपरीत अगर आप खुद से बात करते समय अपना ही नाम लें या खुद को तुम यानी कि थर्ड पर्सन कहकर बात करें तो आपका दिमाग जादुई तरीके से शांत हो जाता है और प्रदर्शन निखरता है। ये खुद से बात करना है। अमेरिका में इस संबंध में किए गए 7 अलग अलग स्टडी में पाया गया कि जब लोग सामाजिक दबाव के वक्त खुद से तीसरे व्यक्ति के रूप में बात करते हैं तो प्रदर्शन जो है वो बेहतर होता है, तनाव घटता है और बाद में बार बार गलती सोचने की आदत भी कम होती है। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार खुद से अपना नाम लेकर बात करना प्रदर्शन सुधारने वाला सबसे भरोसेमंद टूल है। और ये तकनीक कैसे काम करती है, देखिए, जब हम किसी उलझन में खुद का नाम कि भाई जैसे फला का नाम, जैसे अब आपका नाम अनिल है तो भाई अनिल तुम ये कर सकते हो, मतलब खुद का नाम लेकर अगर आप ये बोलेंगे तो हमारा दिमाग उस परिस्थिति से मनोवैज्ञानिक

बना लेता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के भावना और आत्मनियंत्रण लैब के शोध बताते हैं कि ऐसा करने पर दिमाग खुद को पीड़ित या घबराए व्यक्ति के रूप में देखना बंद कर देता है और वो खुद का सलाहकार या फिर गाइड बन जाता है, जिससे भावनाओं को नियंत्रित करना, सही फैसले लेना आसान हो जाता है। मनोवैज्ञानिक और थेरेपिस्ट कहते हैं कि नाम लेकर स्वयं से बात करना दरअसल खुद को एक निष्पक्ष दोस्त की तरह बेहतरीन सलाह देने की मानसिक थेरेपी है। और अब देखिए, इंटरव्यू रूम में जाने से पहले खुद से कहें कि तुमने तैयारी की है, तुम अच्छा करोगे। यह घबराहट को तुरंत कम करता है। जब आप खुद को तीसरे व्यक्ति की तरह देखते हैं तो आप खुद को जज करना बंद कर देते हैं। इससे फोकस गलती के डर पर नहीं बल्कि काम या फिर लक्ष्य पर होता है। अमूमन किसी घटना के बाद लोग सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। नाम लेकर सोचने से दिमाग उस वाक्य को जल्दी भूलकर आगे बढ़ने में मदद करता है। तो भाई, अब अगर आप किसी टेंशन में हो या फिर किसी नौकरी का इंटरव्यू हो या फिर स्टेज पे कोई बड़ा प्रेजेंटेशन हो, कोई इम्तिहान हो, तो वहाँ पर अगर आपको घबराहट महसूस हो रही है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो भाई अपने आप को समझाइए, अपने आप से खुद ही बात कीजिए, अपना नाम लेकर खुद को समझाइए कि नहीं, तुम ये कर सकते हो या मैं ये कर पाऊँगा वगैरह। तो तब आपका तनाव घटेगा, आपका प्रदर्शन भी ठीक रहेगा। ये हमारे वैज्ञानिकों की नई शोध में साबित हुआ है। तो जी, ये जो वैज्ञानिक हमारे शोध करते हैं, ये हमारे ही फायदे के लिए होती है अगर हम ठीक तरह से इसे अपनाएं। तो चलिए, अब सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में हम अपनाते हैं मनोरंजन को, क्योंकि जानकारी के बाद मनोरंजन का सिलसिला जारी रहना चाहिए, है ना। तो आइए एक और गीत कार्यक्रम में सुन लेते हैं।

बिल्कुल जी, रोते हंसते यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, पर कभी अलविदा ना कहना। और हम अलविदा कह भी नहीं सकते अपने दोस्तों को, क्योंकि हमें अभी तो हमारे पास ढेर सारे मनोरंजन और जानकारियों से भरे कार्यक्रम है अपने श्रोताओं के लिए। तो बस यूं ही हर रोज़ आपके लिए आते रहेंगे ये कार्यक्रम लेकर। पर अब आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त भावना कतना को दीजिए अनुमति। सुप्रभात हमीरपुर, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के साथ

0: हर एक जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
3: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
4: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका N. राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण

0: से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नव भारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू रिक्रूट्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टुडे। RBI proves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and

0: claimed 2 wickets. Earlier opting to bat first, SRH posted 255 for 4 in their stipulated 20 overs. Ishan Kishan was the top scorer with unbeaten 79 runs, and so he was named player of the match. Today, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow at 7:30 this evening. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
1: Thank you, Sunil. The Asian Age leads with the headline, India Cyprus Inc. Six Packs Boost Trade Security Ties. The Reserve Bank of India Central Board has approved a record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to the government for financial year 26, reports the Economic Times. In its editorial piece titled She Putin Meet, a new axis in the making, the Pioneer argues that the recent summit between Xi Jinping and Vladimir Putin signals a deepening China-Russia alignment with potentially major consequences for the global order. The piece suggests that Beijing and Moscow are moving beyond symbolism and toward a more coordinated challenge to American influence. It concludes that the emergence of such an axis may become one of the defining geopolitical development of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर. सुबह के 8:30 हुए हैं. लीजिए प्रस्तुत है हिमाचल डायरी का आज का अंक. हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है. आज के इस अंक में हिमाचल में जनगणना का काम डिजिटल तकनीक से किया जाएगा. आम लोगों को खुद अपनी गिनती करने और जानकारी भरने का मौका भी मिलेगा. अभियान को गति देने और देश के प्रत्येक नागरिक की सटीक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार मुख्य रूप से 3 डिजिटल स्तंभों का उपयोग कर रही है. शिमला स्थित जनगणना कार्य निदेशालय ने बताया कि भारत सरकार देश की पूरी आगामी जनगणना को पूरी तरह से आधुनिक, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए संकल्पित है. इसी श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 का प्रथम चरण यानी मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 16 जून से 15 जुलाई तक संचालित किया जाएगा. इसके अंतर्गत अब आम जनता एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेगी. ये कदम न केवल समय बचाएगा बल्कि डेटा की गोपनीयता और सटीकता को भी बढ़ाएगा. हिमाचल प्रदेश में ये सुविधा 1 जून से 15 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगी. स्वगणना के पश्चात नागरिकों को एक 11 अंकीय स्वगणना आईडी नंबर प्राप्त होगा. 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य जब जनगणना कर्मी प्रगणक घर घर सर्वेक्षण करेंगे तब उन्हें ये आईडी प्रदान करना होगा. ऐसा करने पर स्वगणना के दौरान पोर्टल पर प्रविष्ट जानकारी स्वतः प्रगणक के मोबाइल ऐप में प्रदर्शित हो जाएगी. फील्ड में तैनात प्रगणक इस बार कागजी फॉर्म लेकर नहीं बल्कि एक अत्याधुनिक HLO मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे. इस ऐप के जरिए वास्तविक समय में डेटा दर्ज होगा जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना खत्म होगी और डेटा प्रोसेसिंग की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी. जनगणना की इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और प्रबंधन के लिए पोर्टल तैयार किया गया है. ये पोर्टल अधिकारियों को लॉजिस्टिक्स प्रोग्रेस ट्रैकिंग प्रशिक्षण

प्रशिक्षण और संसाधनों के सही आवंटन में मदद करेगा। देश भर में तेजी से बढ़ रही डिजिटल कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन उपयोग के बीच साइबर अपराध लगातार नए और खतरनाक रूप लेते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस के साइबर जांच अधिकारियों और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों को स्मार्टफोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। हिमाचल साइबर पुलिस ने इस बारे में अब एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार साइबर अपराधी अब फर्जी KYC अपडेट संदेश, बैंकिंग फ्रॉड कॉल, व्हाट्सएप हैकिंग, APK मॉलवेयर लिंक, QR कोड स्कैम, स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन, फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म और AI आधारित डीप फेक कॉल के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने लोगों को बैंक अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, कुरियर कंपनी या फिर सरकारी एजेंसी बनकर आने वाली फर्जी कॉल से सावधान रहने के लिए कहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी अनजान कॉलर के दबाव में आकर जल्दबाजी में निर्णय न लें। साइबर विशेषज्ञों ने व्हाट्सएप, SMS, टेलीग्राम या फिर सोशल मीडिया पर आने वाले संदिग्ध लिंक और APK फाइल डाउनलोड ना करने की सलाह दी है और ऐसे लिंक मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल कर बैंकिंग जानकारी, पासवर्ड और निजी डाटा जो है वो चोरी कर सकते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन उपयोग के बीच साइबर अपराध से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। GPS और लोकेशन सेवा की जरूरत पड़ने पर ही चालू रखें। व्हाट्सएप ग्रुप की प्राइवेसी सेटिंग मजबूत रखें। अनजान वीडियो कॉल और स्क्रीन शेयरिंग से बचें और ब्लूटूथ, NFC और हॉटस्पॉट का उपयोग होने के बाद उन्हें बंद कर दें। किसी भी साइबर ठगी या फिर संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ग्यारह KV जोल सप्पर फीडर के वन स्पर लाइन पर RKGMC के अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए HT पोल शिफ्टिंग का कार्य 24 मई को यानी कि कल किया जाना है। इस कारण त्रिशा BEd कॉलेज, सनकर, बन्हा और RKGMC निर्माण स्थल क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति जो है वो बाधित रहेगी। विद्युत उपमंडल रंगस के SDO संदीप सांगल ने प्रभावित क्षेत्र के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। तो हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही।

अभी आप हिमाचल डायरी का आज का अंक सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:35 हुए हैं और दोस्तों आज शनिवार है। शनिवार के दिन इस समय स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम आप सुनते हैं और आज के स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का विषय रहेगा मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स। आज के इस कार्यक्रम में मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर दिव्य से अंजू शर्मा की बातचीत आप सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम लेकर मैं बिल्कुल हाजिर हूँ जी आपके समक्ष, आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में स्वास्थ्य से जुड़ा कोई ना कोई विषय लेकर आते हैं और आपको जागरूक करवाते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहना हम सबकी जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी है। तो अगर जागरूकता होगी तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, और कोई छोटी मोटी समस्या अगर होती भी है तो जागरूकता बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब हमें पता होगा कि ये समस्या क्या है और किस तरह से ये अगला रूप ले सकती है तो हम देर नहीं करेंगे और विशेषज्ञों के पास जाएंगे और अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है ये काफ़ी इस तरह का विषय है कि ये हमारे मतलब शरीर को तो परेशान करता है, ये मानसिक तौर पर हमें परेशान करता है, क्योंकि कहते हैं कि चेहरा ही हमारे शरीर का दर्पण होता है, और अगर हमारे चेहरे में कोई विकार हो तो उससे हमारा जो है ये मानसिक तनाव भी बढ़ता है और हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स होते क्या हैं, क्यों होते हैं, और इनका निदान कैसे किया जा सकता है और कैसे बचा जा सकता है, इस सब के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर दिव्य। ये हमें जानकारी देंगे कि मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स होते क्या हैं और इनसे कैसे हम बच सकते हैं, और अगर हो जाएं तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करवा सकते हैं। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला शुरू करने से पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, धन्यवाद मैडम
0: जी। डॉक्टर साहब, हम बात करने वाले हैं मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स के बारे में, तो बाकी जानकारी हम आपसे बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रीफ सी जानकारी आपसे यही चाहेंगे कि मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स होते क्या हैं।
1: जी मैडम, मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स या चेहरे के डिफेक्ट्स कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ डिफेक्ट्स जो रहते हैं वो जन्मजात विसंगति की वजह से होते हैं कि बच्चा उन विकारों के साथ ही पैदा होता है। उसमें बहुत कॉमन क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट रहता है, जिसे हम कटा होंठ और तालू का डिफेक्ट कहते हैं
0: जी।
1: और भी कई तरह के डिफेक्ट्स होते हैं जो बाई बर्थ होते हैं, पर इसके अलावा फेशियल डिफेक्ट्स चोट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं या जब हम हेलमेट वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं, इंजरी होती है उसकी वजह से चेहरे पे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, वॉर इंजरीज में डिफेक्ट हो जाते हैं
0: जी।
1: कई कुछ तरह की पैथोलॉजीज हैं, ट्यूमर हैं, कैंसर्स हैं, जब उसके ऑपरेशन के कारण हमें चेहरे का कुछ हिस्सा निकालना पड़ता है तो उसमें भी इस तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं
0: जी। जी, तो आपने जो बताया जन्मजात डिफेक्ट्स जो बच्चे में जन्म के साथ ही होते हैं, देखिए बच्चे हमारे घर की शान होते हैं डॉक्टर साहब, और एक रौनक भी उनके साथ होती है, लेकिन बच्चे को जन्म के साथ अगर कोई इस तरह की समस्या होती है तो माता पिता ही नहीं पूरे घर का माहौल थोड़ा सा तनाव वाला हो जाता है। तो क्या कारण रहते हैं कटे होंठ और तालू के?
1: मैम, कटा होंठ और तालू की जो विसंगति है ये सबसे कॉमन है। हम डेटा देखें तो हर 3 मिनट में दुनिया में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है। बहुत सारे कारण हैं, मुख्य कारण रहता है अनुवंशिक यानी जेनेटिक। अगर बच्चे के माता पिता के फैमिली लाइन में किसी को इस तरह का डिसऑर्डर हुआ हो तो काफ़ी कारण चांसेस होते हैं कि बच्चा कटे होंठ तालू से पैदा होता है। इसके अलावा गर्भावस्था में माता को पोषण की कमी, स्पेशली फोलिक एसिड या कुछ विटामिन्स की कमी, या कुछ दवाइयों का सेवन, या कुछ नशीली चीज़ें, शराब या तंबाकू का सेवन, ये भी कुछ कारण हैं जो जिसके कारण बच्चा क्लेफ्ट लिप और पैलेट के साथ पैदा हो सकता है।
0: जी जी, तो ये जो कारण आपने बताए, कुछ एक कारण तो हैं जो जिनको हम नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ एक कारण ऐसे हैं जिनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा हो। तो डॉक्टर साहब, जब कोई इस तरह का बच्चा पैदा होता है जिसका क्लेफ्ट लिप या पैलेट इस तरह का होता है तो उसको समस्याएं क्या क्या आती हैं?
1: मैम, सबसे बड़ी समस्या तो होती है जैसे आपने कहा कि चेहरा दर्पण है देखने में, कि
0: हाँ।
1: बच्चा जब कटे होंठ के साथ पैदा होता है तो देखने में दिक्कत रहती है, तो जो एक पेरेंट्स के लिए एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है। पर
0: हाँ।
1: इसके अलावा बच्चे को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले फीडिंग की, क्योंकि बच्चा शक्ल नहीं कर सकता है तो माँ का दूध पीने में उसे दिक्कत होती है, तालू कटा होने से जो भी पीते हैं वो नाक से बाहर आ जाता है, तो फीडिंग के बाद स्पीच प्रॉब्लम रहती है, ये बच्चे स्पष्ट साफ तरीके से नहीं बोल पाते। इसके अलावा इनके नाक की बनावट में, सांस लेने में, कान के इन्फेक्शंस, ये सब चीज़ें भी चलती हैं। और जैसे आपने कहा कि कॉन्फिडेंस लेवल भी मानसिक रूप में भी वो भी एक प्रॉब्लम होता है, और स्कूल में भी बच्चे ये अच्छे से फिर
0: परफॉर्म
1: नहीं कर पाते।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यही तो चीज़ें होती हैं, क्योंकि अंदर शरीर के अगर कोई बीमारी है तो उसको हम छिपा भी लेते हैं या किसी के साथ ना भी डिस्कस करें, लेकिन हमारे समाज का एक ये हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरह का सोचने का तरीका है ना कि अगर तो कोई समस्या हमें है तो हम उसको छुपाते हैं, लेकिन दूसरे को अगर है तो उसको और उजागर करते हैं और

0: इस दृष्टि से देखने लगते हैं कि पता नहीं ये इसने कोई गुनाह कर दिया है।
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: तो इस तरह की बीमारियां होती हैं जो ईश्वर के हाथ में हैं, और कुछ जो आपने कारण बताए उनके कारण भी हो जाती हैं। तो मान लीजिए कोई इस तरह की समस्या किसी बच्चे को होती है, तो फिर उसका इलाज क्या रहता है? कि सर्जरी ही होती है या कुछ और ट्रीटमेंट्स भी होते
1: मैम,
0: हैं?
1: क्लेफ्ट लिप पैलेट के लिए तो सर्जरी ही तरीका है इसको ठीक करने का, पर अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर सकता है।
0: जी
1: पर क्लेफ्ट लिप और पैलेट का जो डिसऑर्डर है, इसकी जो ट्रीटमेंट है, ये काफ़ी लंबा और कई चरणों में होता है। अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो बच्चे के पैदा होने से लेकर एडल्टहुड तक, मतलब 17-18 साल तक, अलग अलग चरणों में ये ट्रीटमेंट होता है। शुरू में काउंसलिंग, फीडिंग की काउंसलिंग, बच्चा ठीक से वज़न बढ़ रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें। और फिर 3 महीने के बाद जब बच्चा हो जाता है, तो उस वक्त हम पहले होंठ का ऑपरेशन, जो क्लेफ्ट लिप या कटे होंठ का ऑपरेशन करते हैं।
0: जी
1: 1 साल की उम्र में हम कटे तालू का ऑपरेशन करते हैं। फिर स्पीच सर्जरीज होती हैं, उसके अलावा फिर दांतों की, बोन ग्राफ्टिंग्स, चेहरे की और नाक की सर्जरी, अलग अलग अलग अलग चरणों में होती है। और ये
0: जी
1: पूरी तरह से ठीक हो जाता है, बट एक लंबा ट्रीटमेंट है और अलग अलग चरणों में ये किया जाता है।
0: जी जैसे आपने कहा कि एज, मतलब जो पैलेट है, अगर वो वहाँ पे क्लेफ्ट है तो वो 1 साल के बाद होता है,
1: हाँ,
0: और लिप का कुछ महीनों के
1: 3 महीने
0: बाद, है ना, 3 महीनों के बाद। तो उस दौरान किस तरह से मैनेज किया जा सकता है?
1: मैम, उस दौरान सबसे पहले तो फीडिंग काउंसलिंग ही रहती है सबसे पहले,
0: जी
1: क्योंकि सबसे पहली बात है कि बच्चा अगर ठीक से फीड नहीं करेगा तो वो वज़न उतनी तरह से नहीं बढ़ेगा, और हम ऑपरेशन में भी उसकी वजह से देरी होती है और बच्चा बाकी भी ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाती।
0: जी
1: तो इन बच्चों को फीडिंग के लिए काफ़ी तरह तरह की बॉटल्स, फीडिंग बॉटल्स भी आती हैं, इंस्ट्रक्शन रहती हैं जो पैदा होने के टाइम डॉक्टर्स हमेशा देते हैं। पर कुछ बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि इन बच्चों को जनरली ये धारणा रहती है कि बच्चे, क्योंकि नाक से निकलता है दूध, तो कहीं सांस की नली में ना चला जाए,
0: जी
1: तो कई
0: बिल्कुल
1: बार फीडिंग ट्यूब डालते हैं। पर फीडिंग ट्यूब की ज़रूरत बहुत कम केसेस में होती है। बच्चे को अपराइट, सीधे पोजीशन भी हम जनरली बोलते हैं माता को, कि उस पर फीड करें, बार बार डकार करवाएं, और नॉर्मल तरह से ही बच्चे को फीड करना होता है। तो शुरू में तो वही चीज़ें रहती हैं, और लिप के ऑपरेशन के बाद जब स्पीच वाला टाइम आता है, तो हम चाहते हैं कि जनरली 2 साल के आसपास बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट शुरू होती है, तो उससे पहले पहले हम तालू का ऑपरेशन करना चाहते हैं, उससे स्पीच इम्प्रूवमेंट की संभावना बढ़ जाती है।
0: जी, डॉक्टर साहब, हमारा कार्यक्रम इस तरह का है कि इसमें हम बीमारियों की बात करते हैं, और जब बीमारियों की बात की जाती है तो माहौल थोड़ा सा ऐसे तनावपूर्ण हो जाता है। माहौल को थोड़ा सा हल्का करते हैं, एक गीत सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को। हमारे कार्यक्रम की ये रिवायत है कि हमारे जो विशेषज्ञ प्रोग्राम में आए होते हैं, हम उनकी पसंद का गीत सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को। तो आपकी पसंद क्या है? आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
1: मैम, एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, जो जीता वही सिकंदर मूवी से, पहला नशा।
0: जी

0: जी डॉक्टर साहब, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आज हम बात कर रहे हैं मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स के बारे में। तो आपने काफ़ी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में दी। अब हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट के टाइप्स भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एक ही तरह की सर्जरी हर डिफेक्ट में होती है या अलग अलग टाइप्स की रहती है, और किस तरह से ये सर्जरी होती है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा
1: जी अभी
0: संक्षिप्त।
1: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम। जो क्लेफ लिप पैलेट की सर्जरीज होती है, मैंने जैसे बताया कि सर्जरी अलग अलग चरणों में होती है। तो पहला चरण है होंठ का ऑपरेशन।
0: जी
1: होंठ का ऑपरेशन कई तरह की टेक्निक्स होती हैं, पर ममता वो एक ही, मतलब आपके आसपास के ही चेहरे से ही हम उसका ऑपरेशन करके होंठों को ठीक से जोड़ते हैं ताकि वो ठीक सी सिमेट्री में आ जाए और वो देखने में भी अच्छे लगे और फंक्शन भी ठीक से हो, जो सकलिंग या बाकी सब चीज़ें हैं वो भी ठीक से हो।
0: जी
1: दूसरा ऑपरेशन तालू का होता है। तालू का ऑपरेशन दो चीज़ों के लिए ज़रूरी है, एक तो खाने के लिए भी ताकि नाक से चीज़ें बाहर ना निकले, और दूसरा बोलने के लिए। स्पीच डेवलपमेंट के लिए तालू का ऑपरेशन सही ढंग से होना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: दूसरा ऑपरेशन तालू का होता है, जो हम चाहते हैं कि हम 1 से 2 साल के बीच की एज में करते हैं। उसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है वो है स्पीच डेवलपमेंट का, क्योंकि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो तालू के ऑपरेशन की वजह से तालू के या ऊपर का जबड़ा कई बार ग्रो नहीं कर पाता है, तो
0: जी
1: ऊपर का जबड़ा संकरा रह जाता है और तालू की लेंथ छोटी रहती है। उसकी वजह से वो जब बच्चा बोलता है तो नाक से हवा निकलती है तो साफ तरह से नहीं बोल पाता, तो हमें स्पीच थेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है इसमें। और कई बार
0: जी
1: उन बच्चों को कान का इन्फेक्शन भी होता है, तो हमें ENT सर्जन की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो उसके बाद हम जो 5 से 6 साल का जो टाइम है उसमें हम चाहते हैं कि बच्चे की स्पीच थेरेपी हो, और अगर स्पीच थेरेपिस्ट को लगे तो कई बार तालू का ऑपरेशन दोबारा करना पड़ता है उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए ताकि बच्चा ठीक से बोल सके।
0: जी, ये मेरे एक और प्रश्न का उत्तर आपने पहले ही दे दिया, क्योंकि मैं यही पूछने वाली थी कि एक ही सर्जरी से क्या ये ठीक हो
1: हाँ
0: जाता है या
1: हाँ
0: फिर अलग-अलग, तो आपने बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बताया। डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि हमारे हिमाचल में इस तरह के बच्चे काफ़ी देखने में आते हैं या बहुत कम संख्या होती है इनकी?
1: मैम, ये जैसे मैंने शुरू में कहा था कि दुनिया भर में जो डेटा कहता है कि हर 3 मिनट में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है, और 700 बच्चों में से एक बर्थ ऐसा होता है जो क्लेफ डिफेक्ट के साथ होता है। तो कुछ स्टडीज़ हुई हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें यही डेटा यहाँ भी देखने को मिलता है। तो नंबर काफ़ी रहता है कि 700 में से एक बच्चा क्लेफ लिप पैलेट के साथ बॉर्न होता है, और हिमाचल में भी ये डाटा सेम ही है। पर क्योंकि एक टैबू है, एक सोशल टैबू है,
0: जी
1: पेरेंट्स बच्चे
0: हाँ
1: को छुपा के रखते हैं, इसलिए कई बार हमें लगता है कि ये संख्या बहुत कम है। पर
0: जी
1: जब हम कैंप्स करते हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, तो देखते हैं कि इस तरह के बच्चे काफ़ी हैं और उनको ज़रूरत है इलाज की।
0: जी और आपके पास कितने ऐसे बच्चे आ चुके हैं अब तक की आपकी प्रैक्टिस में?
1: मैं पिछले कहें तो 15 से 16 वर्ष के साथ क्लेफ लिप एंड पैलेट सर्जरी से जुड़ा हूं, और अमूमन कोई 1200 से 1500 तो इस तरह के बच्चों का हम सक्सेसफुल तरीके से ऑपरेशन कर चुके हैं।
0: जी, और देखिए ये फील्ड कुछ इस तरह का है, वैसे तो सर्जरी ही अपने आप में इस तरह का फील्ड होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा एक ये होता है कि दूसरे व्यक्ति को आप एक नया जीवन दे रहे हैं, लेकिन ये स्पेशली ब्रांच चुनने के पीछे आपकी मोटिवेशन कहाँ से थी?
1: मैम, क्लेफ लिप एंड पैलेट की सर्जरी जैसे कही जाए तो ये सिर्फ सर्जरी नहीं है, ये बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। और जब ऑपरेशन के बाद जो माता पिता के चेहरे पे जो खुशी आती है,
0: जी
1: शायद वही सबसे बड़ी प्रेरणा है जिसकी वजह से मैं पिछले 15 वर्षों से इस फील्ड से जुड़ा हूँ।
0: जी, बहुत ही अच्छा काम है, आपको हम अपने इस मंच से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि लोगों के चेहरों पर खुशी लाना ये बहुत मुश्किल टास्क होता है और आप ये बहुत इजीली कर रहे हैं और 15 सालों से जुड़े हुए हैं। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि मान लीजिए कोई अच्छे परिवार का बच्चा है, किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो वो लोग तो किसी भी हद तक जाके बच्चे का ट्रीटमेंट करवाते हैं। वैसे तो हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि वो बेशक कुछ भी करें लेकिन उनका बच्चा ठीक होना चाहिए, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये सर्जरी क्या बहुत महंगी होती है या किस तरह, मतलब आम व्यक्ति करवा सकता है अपने बच्चे की या नहीं?
1: मैम, इसका जवाब मैं इस ढंग से देना चाहूँगा कि सर्जरी का खर्चा तो जैसे बाकी खर्चा वैसा ही होता है, पर जो क्लेफ लिप एंड पैलेट डिसऑर्डर है इसके लिए एक संस्था है स्माइल ट्रेन इंटरनेशनल करके, ये दुनिया का बहुत बड़ा एनजीओ है जो क्लेफ लिप एंड पैलेट के बच्चों के लिए काम कर रहा है, और हम पिछले 15 वर्षों से उनसे जुड़े हैं और ये पूरी तरह से फ्री सर्जरीज हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। इसमें किसी भी तरह का भी खर्चा नहीं होता, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सभी तरह की सर्जरी, चाहे वो लिप की सर्जरी है, स्पीच थेरेपी है, ऑर्थोडोंटिक्स है, या बाद में नाक की सर्जरी है, वो पूरी तरह से फ्री होती है। तो उसमें खर्चे की कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि हम बच्चे को जब तक वो ऑपरेशन के लिए फिट नहीं होता है तब तक उनको कोई पोषण की कमी है तो उसके लिए भी हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं ताकि उनका ऑपरेशन ठीक से हो सके।
0: क्योंकि इस बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि कई वर्ग तो इसी कारण से पीछे रह जाते हैं, वो नहीं चाहते कि, मतलब वो ये तो चाहते हैं कि बच्चे का ट्रीटमेंट करवाएं लेकिन उनका आर्थिक जो है स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता है, तो वो फिर कहीं ना कहीं बच्चों को छुपाते भी हैं और ये समस्या जो है फिर अगर मान लीजिए इसको ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आगे गंभीर रूप ले सकती है।
1: बिल्कुल गंभीर रूप ले सकती है। एक तो अगर आप डाइट अच्छे से नहीं लेंगे तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, स्पीच बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, और जैसे ईयर इन्फेक्शंस की चांसेस बढ़ते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो सब चीज़ें दिक्कत रहती है, मतलब फंक्शन और कॉन्फिडेंस दोनों चीज़ों में ही दिक्कत बच्चे को सामना करना पड़ता है।
0: जी जी। और डॉक्टर साहब जैसे क्लेफ्ट लिप या पैलेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ प्लांट किया जाता होगा, है ना?
1: नहीं मैम, वो अपने ही शरीर के जो मांस है उसी से हम ऑपरेशन करके उसको वापस सही जगह पे जोड़ देते हैं, सरल भाषा में।
0: जी, तो मतलब आर्टिफिशियल इसमें नहीं, कुछ नहीं होता, अपने ही शरीर का हिस्सा है, वो अच्छे से फिर उसको अब्सॉर्ब भी कर लेता
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो मान लीजिए एक बार किसी की सर्जरी हो गई तो उसके बाद उसको क्या क्या प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है और फॉलोअप के लिए आप कब कब बुलाते हैं?
1: मैम जैसे हमने कहा कि लंबा चरणों में ऑपरेशन है तो फॉलोअप की ज़रूरत बहुत रहती है। जनरली लिप सर्जरी के बाद तो रूटीन सर्जरी के बाद की ही जो प्रिकॉशन है रखनी होती है ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तालू के ऑपरेशन के बाद ख्याल रखना पड़ता है डाइट का, अगर बच्चा कुछ टाइम तक उसे हमें लिक्विड डाइट पर रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि तालू का ऑपरेशन फिर से वो स्टिचेज या टांके खुल ना जाए। इसके अलावा मैम जब हम बच्चा 8 या 9 साल का होता है, जब हम दांत आने लगते हैं उस टाइम पे हम एक बोन ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया करते हैं जिसमें हम जो हड्डी में भी कट है वहाँ भी कुछ ग्राफ्टिंग करते हैं, उस टाइम पे भी बच्चे को ख्याल रखना होता है कि हम सफाई रखें, ठीक से हाइजीन, ओरल हाइजीन मेंटेन करें, और फॉलोअप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन बच्चों को होंठ या तालू के ऑपरेशन के बाद भी दिक्कतें रहती हैं क्योंकि दांतों के अलाइनमेंट,

0: जबड़े का संकरा होना, नाक की चीज़ें, तो कई बार ये चीज़ें लोग मिस कर जाते हैं कि होंठा तालू के ऑपरेशन के बाद वो बच्चे को आगे चेकअप के लिए नहीं लाते, जैसे हम सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज़ या डिफेक्ट्स कहते हैं। तो
1: जी
0: वो फॉलोअप कम से कम एडल्टहुड तक बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बाकी चीज़ों को भी ठीक से ठीक कर सकें और बच्चा पूरी तरह से एक स्वस्थ ज़िंदगी जिए उसके बाद।
1: जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आप बतौर स्पेशलिस्ट क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के चैलेंजेस आपको आते हैं, किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि लोग अपने आप आ जाते हैं, या जब आप स्पेशल कैंपिंग करते हैं तभी लोग सामने आते हैं, या किस तरह से क्या क्या होता है?
0: पिछले 15 सालों में कुछ चेंज तो देखा है मैम। जब शुरू में हमने स्टार्ट किया था तो ये बहुत मुश्किल था इस तरह के बच्चों को ढूंढना। हमें लगता था कि हिमाचल में शायद इंसिडेंस कम है, जैसे आपने कहा, तो
1: जी
0: हमने उस टाइम आउटरीच प्रोग्राम शुरू किए। तो उस टाइम एक रिलक्टेंसी थी लोगों की कि बच्चे को बाहर नहीं लेके जाएंगे, दिखाएंगे नहीं,
1: जी
0: और पर अभी हम देखा है कि चीज़ें कुछ इंप्रूव हुई हैं और हम अब काफ़ी आउटरीच कैंप्स करते हैं। इवन गवर्नमेंट की संस्थाएं भी हमारी इसमें मदद करती हैं, हम घर घर जाके या जो कार्यक्रम है उसमें भी हम चिन्हित करने की कोशिश करते हैं, उनको अवेयर करते हैं। बट फिर
1: जी
0: भी मैं ये कहूँगा और आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहूँगा कि जो भी इस तरह का बच्चा अगर किसी के नज़र में कुछ भी है तो उनको छुपाना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल टोटली करेक्टेबल डिसऑर्डर है और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ ज़िंदगी जीता है।
1: जी और एक बहुत बड़ी बात जो आपने कही, जो स्माइल ट्रेन एनजीओ की आपने बात कही, तो जो गरीब तबका है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी सुविधा है कि उनके बच्चे भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और उनको पैसे भी खर्च
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: मैम,
1: करने पड़ेंगे।
0: बिल्कुल।
1: जी डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम में और समय नहीं बचता कि हम आपसे और जानकारी ले पाएँ, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य मंच पर फिर आपसे मुलाकात होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना इतना कीमती समय दिया हमारे श्रोताओं को जानकारी देने के लिए, मैक्सिलोफेशियल डिफेक्ट्स के बारे में बात की, आपने अपना समय जो दिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9 बजे हैं, अब से लेकर 9:17 तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

अभी आप सुन रहे थे रांझना फिल्म का गाना, आवाज़ें थी मधुश्री आंचल सेठी और सखियों की, रियाज कामिल ने लिखा था इसे और संगीत से संवारा था एआर रहमान ने। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं जॉनिटा गांधी की आवाज़ में दंगल फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

दोस्तों, आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन दिवस। इसका उद्देश्य महिलाओं में प्रसव के दौरान होने वाली गंभीर बीमारी प्रसूति फिस्टुला के प्रति जागरूकता फैलाना तथा इसके उन्मूलन के लिए प्रयास करना है। इस रोग के कारण महिलाओं को शारीरिक पीड़ा के साथ साथ सामाजिक उपेक्षा और मानसिक कष्ट भी सहना पड़ता है। ये समस्या विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है जहां उचित स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी होती है। समय पर चिकित्सा सुविधा, सुरक्षित प्रसव तथा महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता से इस रोग को रोका जा सकता है। इस वर्ष की थीम है हर हेल्थ इज अ राइट, इन्वेस्ट इन एंडिंग फिस्टुला एंड चाइल्ड बर्थ इंजरीज। तो दोस्तों, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपको पालोमे की आवाज़ में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में पीके फिल्म का गाना। अमिताभ वर्मा हैं गीतकार और संगीतकार हैं शांतनु मोइत्रा। लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम।

0: अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:20 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे।
1: है लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव 2026
2: 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को मतदान केंद्रों के लिए होंगी रवाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का किया उल्लंघन, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि, 10 दिन में तीसरी बार बढ़ी तेल की कीमतें। और प्रदेश में लहसुन की अच्छी पैदावार, बेहतर दाम मिलने पर किसान खुश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। ये रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश में 3 चरणों में हो रहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव के पहले चरण में 26 मई, दूसरे चरण में 28 मई और तीसरे व अंतिम चरण में 30 मई को वोट डाले जाएंगे। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के

0: निर्देश दिए गए हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात पोलिंग पार्टियों को 24 व 25 मई को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो 3 चरणों में होने वाले मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकार द्वारा करवाई गई मंत्रिमंडल की बैठक को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव को अब कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई लोक लुभावन फैसले लिए हैं। जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
1: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक करते हैं और कैबिनेट में फैसले लिए गए कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाए। उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस में जो प्रोफेसर है उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाने का फैसला लिया, और फैसले जो मानदेय बढ़ाने के लिए, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर है, चाहे वो अलग विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ फैसले लिए गए थे, उनको भी अभी अनाउंस किया। पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो प्रयत्न किया गया है, इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।
0: केंद्रीय आयुष मंत्रालय का देशव्यापी योग 365 अभियान लोगों की दैनिक दिनचर्या व जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गया है। 13 मार्च से शुरू हुआ यह अभियान 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सम्पन्न होगा। ऊना जिला में योग 365 अभियान को गति दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
2: भारत सरकार के योग 365 अभियान के अंतर्गत ऊना में जिला प्रशासन और आयुष विभाग द्वारा योग के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 13 मार्च से शुरू 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में गांव स्तर पर सामाजिक संगठनों, नुक्कड़ नाटकों और आयुष विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा लोगों को नियमित योग अभ्यास से सेहतमंद रहने और जीवन शैली से जुड़े रोगों के अलावा गैर संक्रमित रोगों से बचाव बारे जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा लोगों को आयुष मंत्रालय की अनूठी पहल निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण सत्रों के साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा हर रोज प्रसारित की जाने वाली लाइव योग कक्षाओं से लोगों को जोड़ने बारे भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। 15 मई को 3 रुपये प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में ये तीसरी बार संशोधन है। हाल ही के दिनों में कीमतों में लगभग 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि ईरान संघर्ष और हुमोर्ज में व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। प्रदेश में मई माह में एलपीजी की डिजिटल बुकिंग बढ़कर 94% हो गई है, जबकि फरवरी माह तक ये बुकिंग 85% थी। इसके अलावा डिजिटल बुकिंग करने से फर्जी बुकिंग और डुप्लीकेशन भी कम हुई है। कालाबाजारी और हेराफेरी को रोकने के लिए तेल विपणन कंपनियां डिजिटल प्रमाणीकरण कोड को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं, और वर्तमान में हिमाचल में इन कंपनियों ने 94% प्रमाणीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रदेश में इस बार लहसुन की अच्छी पैदावार हुई है और फसल के बेहतर दाम मिलने से किसान खुश हैं। सोलन की सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में किसान इन दिनों लहसुन बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार उन्हें पिछले वर्ष के मुकाबले लहसुन का अच्छा मूल्य मिलने से फायदा हुआ है।
3: मैं जयसिंह ठाकुर बेरगांव से, मेरा लहसुन पिछले 100 रुपये था, इस बार 145 रुपये का।
4: सुरेंद्र कुमार और मेरा गांव जो है विधाड़ है। पिछले साल के मुताबिक जो इस बार जो है किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा जो है फसल इस बार है और थोड़ा सा अच्छा रेट भी मिल रहा है मेरे को।
5: नाम राकेश कुमार, मैं कुन्हार से आया हूँ, और इस बार पिछले साल से लहसुन के रेट बहुत बढ़िया मिले हैं जिमीदारों को, और जिमीदार बहुत
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल 24 मई तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद

0: के निर्णयों से जुड़ी खबरों को जगह दी है। अमर उजाला व दिव्य हिमाचल की एक जैसी सुर्खी है, 2 लाख से कम आय वाली महिलाओं को ही मिलेंगे 1500, 2215 पद भरेंगे। पंजाब केसरी का शीर्षक है, हिमाचल में अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, इंस्पेक्टरी राज से मिलेगी मुक्ति। जबकि दैनिक भास्कर के शब्द हैं, टूरिस्ट सीजन में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, 2500 पद भरने की मंजूरी। हिमाचल दस्तक लिखता है, विभिन्न विभागों में 1829 नए पद भरने को मंत्रिमंडल की मंजूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, रेरा की मंजूरियों ने बढ़ाई सरकार की चिंता, धारा 118 के उल्लंघन पर घिर रहे अधिकारी। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, उबला देश, हिमाचल में राहत की बौछारें, 25 मई तक बारिश के आसार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी, पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को मतदान केंद्रों के लिए होंगी रवाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का किया उल्लंघन, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि, 10 दिन में तीसरी बार बढ़ी तेल की कीमतें। और प्रदेश में लहसुन की अच्छी पैदावार, बेहतर दाम मिलने पर किसान खुश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हुए हैं, अब से लेकर सुबह 10 बजे तक आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज OTT की क्वीन कहलाती है, वो है शेफाली।

बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थीं। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। साल 2000 में उन्होंने निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की, जिनके साथ उनके दो बेटे आर्यमन और मौर्य हैं।

ना हो। शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10 वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमेन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गुजराती रंगमंच में काम करके अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दे दिया था।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।

फिल्म सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका मिली।

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई पुरस्कार

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय

दमदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती है।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्याले की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आईं। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

करण मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घायवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कंवल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

शेफाली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, शेफाली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें

दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में शेफाली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत के रीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 10 बजने को हैं। अब हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार ये वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के

0: ये मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके पास अवैध दस्तावेज में ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पल्लडम के एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र भी पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया गया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में भी कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतरोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं आज की लघु वार्ता। आज की लघु वार्ता का विषय है पर्यावरण के लिए जीवन शैली।

जी आज की लघु वार्ता के साथ हाजिर हूँ मैं भावना कतना। पर्यावरण के लिए जीवन शैली, जी हाँ, इसके लिए टिकाऊ, संयमित और प्रकृति के अनुकूल हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जीवन शैली से बहुत ज़्यादा प्रभाव पर्यावरण को पड़ता है। जिस तरह की जीवन शैली हम अपनाते हैं, हमारा पर्यावरण भी वैसा ही हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी जीवन शैली इस तरह की बनानी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। इसमें अंधाधुंध उपभोग की जगह सोच समझकर उपयोग का सिद्धांत अपनाया जाता है। इसके लिए हम अपने दैनिक जीवन में कई बातों का, कुछ मुख्य बातों का पालन कर सकते हैं, जैसे कि संसाधनों की बचत। उपयोग में ना होने पर बिजली के उपकरण जैसे कि पंखे हैं, लाइट है, एसी है वगैरह बंद कर दें। पानी की बर्बादी रोकें और वर्षा जल संचयन को अपनाएं। कई बार क्या होता है कि गर्मी के दिन हैं, हम सोचते हैं कि हमारा घर, हमारा कमरा जो है वो ठंडा रहे, तो जब हम नहीं होते हैं तब भी हम पंखे चलाए रहने देते हैं, एसी चले रहते हैं कि जब हम आएं तो हमें कमरा ठंडा ही मिले। गाड़ी में बैठते हैं तो भी एसी चला ही रहता है कि गाड़ी ठंडी रहे। तो ये हमें थोड़ा बचाव करना है कि अगर हम वहाँ पर नहीं हैं तो इन चीज़ों को बंद कर दें, इन बिजली के उपकरणों को बंद कर दें। वहाँ इसमें लाइट भी शामिल है, टेलीविज़न भी शामिल है, इनका जो है वो हमें उपयोग नहीं करना चाहिए अगर हम वहाँ पर नहीं हैं तो। क्योंकि जब हम आएं तभी स्विच ऑन करना है और ये उपकरण जो है वो उपभोग करने हैं, अन्यथा इनकी जो अननेसेसरी हम उपभोग करते हैं उससे पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। और ऐसे ही पानी की बर्बादी भी हमने रोकनी है, अननेसेसरी हमने पानी वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके उतना

उपयोग करना है और ऐसे व्यर्थ बहने नहीं देना है, जैसे कि हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अपनी गाड़ियाँ धोते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं। तो जब हम कर रहे हैं काम तभी हमने पानी का नलका चलाना है, नहीं तो हमने उसे बंद कर देना है। इससे भी हम बहुत पानी की बचत कर सकते हैं। प्लास्टिक से दूरी हमने बनानी है, एकल उपयोग सिंगल यूज वाले प्लास्टिक का उपयोग बंद करना है, कपड़े के थैले, जूट के बैग और बांस से बने उत्पादों को अधिक इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है, फिर भी हम उसका उपयोग करते हैं क्योंकि सुविधा हम अपनी देखते हैं, लेकिन इसके पीछे हानिकारक तत्व जो छिपे हैं उनको हम नहीं देख पाते। तो हमने उनको देखना है, जागरूक रहना है, प्लास्टिक से दूरी बनानी है। अपने स्थानीय क्षेत्र में पैदा होने वाले फल सब्जियों का उपयोग करना है, क्योंकि इन्हें दूर से लाने में कम ईंधन खर्च होता है। छोटी दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल का उपयोग करें, लंबी दूरी तय करने के लिए व्यक्तिगत वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन जैसे कि मेट्रो है, बस है या कार पूल का इस्तेमाल करें, इससे ईंधन की बहुत बचत होती है। तो अब हमने यही करना है, ईंधन की बचत के लिए अगर एक ही दिशा में कई लोग जा रहे हैं तो कार पूल का उपयोग करना है, या फिर आप बस का उपयोग भी कर सकते हैं जी। और देखिए ऐसे ही बात करें आगे की, तो रिसाइकिल और रीयूज, पुनर्चक्रण, चीज़ों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के तरीके खोजने हैं। कचरों को सूखा और गीला अलग अलग करके नष्ट करना है। और ये जो हम बार बार खरीदारी करते हैं अपने कपड़ों की, चाहे हमें ज़रूरत है या नहीं, अपने मोबाइल की, चाहे हमें ज़रूरत है या नहीं, देखा देखी के लिए, उसका ये जो उपयोग है हमने बंद करना है। जब हमें ज़रूरत हो तभी हमने कोई चीज़ खरीदनी है, अन्यथा नहीं। इस तरह करके भी हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना है, और सिर्फ पेड़ लगाने ही नहीं है, उनकी रक्षा भी करनी है, उनको सहेजना है, उनका पालन करना है ताकि वो अच्छे से बड़े हो सकें और वृक्ष का रूप ले सकें। क्योंकि होता ऐसा है अक्सर हम कहते हैं पौधे लगाने हैं, लगाने हैं, लगा हम देते हैं, फिर उसके बाद कोई देख रेख उन पौधों की नहीं होती है, पता नहीं होता है कि वो पौधे पनप भी रहे हैं या फिर सूख के नष्ट हो गए हैं, कुछ पता नहीं होता। तो जो हमने पौधे लगाने हैं, बहुत अच्छा काम है पौधे लगाने का, लेकिन बाद में उनकी देख रेख भी हमें करनी है। तो पौधे ऐसी जगह पर लगाने हैं ताकि हम उसकी देख रेख कर सकें, थोड़े दिनों में वहाँ जा सकें, देख सकें कि पौधा हमारा ज़िंदा है या नहीं, ठीक से बढ़ रहा है या नहीं। क्योंकि सिर्फ पौधे लगा के काम ख़त्म नहीं होता, उसकी देख रेख भी करनी है, बड़ा वृक्ष उसे बनाना है, तभी हमारा उद्देश्य जो है वो सफल हो पाता है। नागरिक होने के नाते हम में से कई लोगों को पर्यावरण की चिंता है, लेकिन वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण और एक स्वस्थ प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम में से कई लोग विचार करते हैं लेकिन सिर्फ विचार ही करते हैं, करते नहीं हैं। तो हमने आपको बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और ऐसे ही देखिए संरक्षण के प्रति हमें जागरूक बनना है और जागरूकता फैलानी भी है। लुप्त प्राय जानवरों और उन्हें होने वाले खतरों के बारे में जितना हो सके उतना जानें और अपना ज्ञान और चिंता दूसरों के साथ साझा भी करें। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी जंगल में जाएं, वन्य जीवों को देखकर समझें कि वे मानव जीवन को कैसे समृद्ध बनाते हैं। हम उन्हीं चीज़ों का संरक्षण करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं और जिन्हें हम महत्व देते हैं। तो इसीलिए हमें जंगल में या प्राकृतिक वातावरण में घूमना ज़रूरी है ताकि हमें उसकी नॉलेज हो सके, हमें प्रकृति में रहने वाले जीव जंतुओं की नॉलेज हो सके। क्योंकि हम उनसे प्यार करेंगे तभी हम उनका संरक्षण भी करेंगे, और ये पर्यावरण के लिए बेहद ज़रूरी है।
और हमने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, दैनिक जीवन शैली में बदलाव लाना है, जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है, पैदल चलना है, साइकिल चलाना है, कारपूल करना है।

बिल्कुल, और इसमें साथ में ये भी शामिल होता है अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कि कचरे को हमने कम करना है और कचरे का सही तरीके से निपटान भी करना है। ये बहुत ज़रूरी है और बार बार सचेत भी हमें किया जाता है, लेकिन फिर भी हम लापरवाही बरतते हैं। लेकिन इसके लिए हमें जागरूक होना है, कचरे को कम करना है, रिसाइकिल पुनर्चक्रण का तरीका अपनाना है और कचरे का सही तरीके से निपटान भी करना है। और जो हमारा ई कचरा होता है ना, उसके बारे में भी जागरूकता हमें होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का पूरा उपयोग हमने करना है, उन्हें इधर उधर फेंकने के बजाय ई वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट्स तक पहुंचाना है। पैदल चलना, साइकिल का उपयोग करना और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना, ये हमारी दिनचर्या में होना चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करे तो ये सामूहिक रूप से पूरी पृथ्वी को बचाने में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो आइए, हमने भी अपने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनानी है और अपने पर्यावरण को बचाना है। ये थी आज की लघु वार्ता, पर्यावरण के लिए जीवन शैली।

0: जी, अभी आप लघु वार्ता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 MHz पर सुबह के 10:15 हुए हैं और आपकी रेडियो दोस्त भावना कतना हाजिर है कार्यक्रम लेकर एक सितारा। और आज हम जिस सितारे के बारे में बातचीत करेंगे वो है बछेंद्री पाल। जी हाँ, इनका जन्म 24 मई 1954 को हुआ था, यानी कि कल इनका जन्म दिवस हम मनाएंगे। और आज के दिन यानी कि 23 मई को 1984 में उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया था और ये हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी और ये गौरव हासिल करने वाली वो दुनिया की 5वीं महिला हैं। तो आइए आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं, बछेंद्री पाल के बारे में। और आपको तो पता ही है, जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन हमारे हर कार्यक्रम में रहता है, तो इस कार्यक्रम में भी है, बातचीत उनके बारे में करेंगे, साथ साथ गीत भी सुनेंगे। तो आइए गीत सुन लेते हैं कार्यक्रम में ये पहला।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

whatever.

जी बछेंद्री पाल एक सितारा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये हमारी आज की सितारा हैं। और देखिए ना, उनके बारे में हम आपको बताएं, बछेंद्री पाल का जन्म जो है ना, उत्तरांचल के चमोली ज़िले के बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। और बछेंद्री अपनी माँ हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, इसीलिए बछेंद्री को आठवीं से आगे की पढ़ाई का खर्चा सिलाई कढ़ाई करके खुद ही जुटाना पड़ा। दसवीं पास करने के बाद बछेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बछेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत से MA और फिर BEd की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। जी हाँ, आपको बताएं कि बछेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बछेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वो सोचती थी कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वो उसकी ये बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल, पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती ही रही, क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बछेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और उतरनी भी पड़ती थी। तो ये इनका शौक बचपन से ही था और ये पहाड़ चढ़ते उतरते भी थे, तो इनको थोड़ी आदत भी थी। और इसी दौरान बछेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई और उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की और बछेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बछेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया।

एक सितारा कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। और हमारी आज की सितारा बिशेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिशेंद्री पाल के बारे में बात कर रहे हैं हम। बिशेंद्री के लिए पर्वतारोहण का पहला मौका जो था वो था 12 साल की उम्र में आया, जब उन्होंने अपने स्कूल की सहपाठियों के साथ 400 मीटर की चढ़ाई की। और ये चढ़ाई उन्होंने किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं की थी, दरअसल वे स्कूल पिकनिक पर गई हुई थी। चढ़ाई चढ़ती गई लेकिन तब तक शाम हो गई और जब लौटने का ख्याल आया तो पता चला कि उतरना संभव ही नहीं है। जाहिर है, रात भर ठहरने के लिए उनके पास पूरा इंतजाम नहीं था। बगैर भोजन और टेंट के उन्होंने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी और इधर से ही उनका ये सिलसिला जो है पर्वतारोहण का शुरू हुआ। मेधावी और प्रतिभाशाली होने के बावजूद उन्हें कोई अच्छा रोजगार नहीं मिला। जो मिला वो अस्थाई था, जूनियर स्तर का था और वेतन भी बहुत कम था। तो इससे बिशेंद्री को निराशा हुई और उन्होंने नौकरी करने के बजाय नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए आवेदन किया और यहाँ से बिशेंद्री के जीवन को नई राह मिली। 1982 में एडवांस कैंप के तौर पर उन्होंने गंगोत्री, जो कि 6672 मीटर की ऊंचाई पे था, और रुदुगैरा, जो 5819 की चढ़ाई पे था, उसको पूरा किया। और इस कैंप में बिशेंद्री को ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने बतौर इंस्ट्रक्टर पहली नौकरी दी। और उसके बाद 1984 में भारत का चौथा एवरेस्ट अभियान शुरू हुआ। दुनिया में अब तक सिर्फ 4 महिलाएं एवरेस्ट की चढ़ाई में कामयाब हो पाई थी। 1984 के इस अभियान में जो टीम बनी उसमें बिशेंद्री समेत 7 महिलाओं और 11 पुरुषों को शामिल किया गया था और 1,29,028 फुट यानी कि 8,848 मीटर की ऊंचाई पर सागर माथा एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराया गया। और इसके साथ एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली वे दुनिया की 5वीं महिला बनी और तब केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था।

जी, हमने बछेंद्री पाल के बारे में उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने एवरेस्ट अभियान को सफल बनाया, और देखिए उसके लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो बछेंद्री पाल भारत की प्रथम ऐसी महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त की, और उनका स्थान विश्व में पांचवा है। बछेंद्री पाल ने न केवल महिलाओं को पर्वतारोही दल का एवरेस्ट अभियान में नेतृत्व किया बल्कि कई पुरस्कार भी हासिल किए। 1994 में बछेंद्री पाल ने गंगा राफ्टिंग की। ये राफ्टिंग उन्होंने हरिद्वार से कलकत्ता तक महिला दल का नेतृत्व करते हुए की। 1997 में बछेंद्री पाल ने केवल महिला दल का नेतृत्व करते हुए हिमालय पर्वतारोहण किया। बछेंद्री पाल का नाम 1990 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। 1985 में उन्हें कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार प्रदान किया गया। 1985 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1986 में उन्हें कलकत्ता लेडीज स्टडी ग्रुप अवार्ड दिया गया। आईएमएफ द्वारा पर्वतारोहण में सर्वश्रेष्ठ होने का स्वर्ण पदक उन्हें दिया गया। 1986 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 1994 में बछेंद्री पाल को नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया। और देखिए बात करें 1995 की तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। 1997 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया, और 1997 में ही बछेंद्री पाल को महिला शिरोमणि अवार्ड दिया गया। वो सेवन सिस्टर्स एडवेंचर क्लब उत्तरकाशी तथा ऑल इंडिया वुमेन्स जूडो कराटे फेडरेशन की वाइस चेयरमैन भी रहीं और लॉयंस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, और वो विश्व के अनेकों देशों में पर्वतारोहण संबंधी विषय पर भाषण भी देती हैं। और आपको बताएं कि 1993 में उनके नेतृत्व में एक भारत नेपाली महिला पर्वतारोही दल ने एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की जिसमें कई विश्व रिकॉर्ड बने। और इसके अलावा उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किली मंजारो पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की।

बिल्कुल जी, बछेंद्री पाल के बारे में हम यही कहेंगे कि देखिए, आजकल वर्तमान में वो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन TSAF की निदेशक के रूप में कार्य करती हैं, जहां वे युवाओं और विशेष रूप से महिलाओं को पर्वतारोहण और नेतृत्व के गुण सिखाती हैं। और हम तो यही दुआएं करती हैं कि यूं ही वो आगे बढ़ती रहें, अपने गुणों के साथ औरों को भी जागरूक करती रहें। तो ये था हमारा आज का एक सितारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने बात की बछेंद्री पाल के बारे में। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। एक सितारा कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। सुबह के 10:45 हो चुके हैं और ये समय है लोक रंग कार्यक्रम का।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: लोक रंग कार्यक्रम सुनने वाले यहाँ दे सारे श्रोतियाँ जो भावना कतना दी, राम राम भई श्रोतियों कदे हैं तुहां, उम्मीद है चुस्त तंदुरुस्त होने कने आकाशवाणी हमीरपुर सुना दे होने। आज भी अहां लोक रंग कार्यक्रम च तुहां लई बड़े लोक गीत लई करे आयो, ता आवा कार्यक्रम दी शुरुआत करी लैंदे इस लोक गीता सौगी।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: लोक रंग कार्यक्रम तुहां सुनी कर दे अन आकाशवाणी हमीरपुरा ते कने अड़े जे लोक गीत तुहां सुनिया सह था रंजना कुमारी और अदा गाया हुआ कने हुन अहां तुहां जो जे लोक गीत सुनाना है सह संजू कने बिमला राठौर और अदा गाया हुआ आवा सुनी लेंदे अन।

ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਓ ਇਸੇ ਗੀਤਾਂ ਕੰਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲੋਕ ਰੰਗ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਪੰਨ। ਦਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰਾਮ ਰਾਮ। जी, अभी आप लोक रंग कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। प्रदेश में तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात पोलिंग पार्टियों को आज अंतिम चरण का पूर्वाभ्यास करवाया जा रहा है और कल 24 व 25 मई को इन्हें संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो तीन चरणों में होने वाले मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करवाएंगे। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में भुगतान सहित अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26, 28 और 30 मई को संबंधित क्षेत्रों में सरकारी व निजी संस्थान बंद रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को उसी दिन छुट्टी मिलेगी जब उनकी पंचायत या संबंधित क्षेत्र में मतदान होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी ये अवकाश मान्य होगा। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकार द्वारा करवाई गई मंत्रिमंडल की बैठक को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव को अब कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई लोक लुभावन फैसले लिए हैं। जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
1: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक करते हैं और कैबिनेट में फैसले लिए गए कि महिलाओं को 1500-1500 रुपए दिए जाए। उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस में जो प्रोफेसर है उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाने का फैसला लिया, और फैसले जो मानदेय बढ़ाने के लिए, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर है, चाहे वो अलग विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ फैसले लिए गए थे, उनको भी अभी अनाउंस किया। पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो प्रयत्न किया गया है, इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।
0: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। 15 मई को 3 रुपये प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में ये तीसरी बार संशोधन है। हाल ही के दिनों में कीमतों में लगभग 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। प्रदेश में इस बार लहसुन की अच्छी पैदावार हुई है और फसल के बेहतर दाम मिलने से किसान खुश हैं। सोलन की सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में किसान इन दिनों लहसुन बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार उन्हें पिछले वर्ष के मुकाबले लहसुन का अच्छा मूल्य मिला है, जिससे उन्हें फायदा हुआ है।
2: जयसिंह ठाकुर बेरगांव से, मेरा लहसुन पिछले 100 रुपये था, इस बार 145 बिका।
3: सुरेंद्र कुमार और मेरा गांव जो है बिधाड़ है। पिछले साल के मुताबिक जो इस बार जो है किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा जो है फसल इस बार है और थोड़ा सा अच्छा रेट भी मिल रहा है हमको।
4: नाम राकेश कुमार, मैं कुन्हार से आया हूँ, और इस बार पिछले साल से लहसुन के रेट बहुत बढ़िया मिले हैं जिम्मेदारों को, और जिम्मेदार बहुत खुश है इस बार।
0: कालका शिमला मार्ग में सलोगड़ा के समीप आज एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। ये बस सोलन से शिमला जा रही थी और इसमें करीब 10 लोग सवार थे, जिनमें से चालक सहित 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन भेजा गया है। दुर्घटना के कारणों की जाँच चल रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर 12:00 बजे तक आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम
6: और खयाम साहब की धुन।

जगजीत कौर को अभी आपने सुना फिल्म बाजार में। और लीजिए अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, आवाज चित्रा सिंह की है और फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म गजल का ये गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और धुन बनाई है मदन।

ग्यावस्ती आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज लता मंगेशकर की फिल्म का नाम है लेकिन। गीत को गुलजार साहब ने लिखा है और धुन बनाई है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। मैटिनी शो के इस ताजा तरीन अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आज के इस अंक को लेकर दोस्तों, फिल्मी दुनिया में फिल्मी पर्दे पर फिल्मी गीतकारों ने हमारे आभूषणों पर बहुत सारे गीत लिखे और नायिकाओं को वो आभूषण पहनाकर हमें बहुत ही आनंदित किया है ना। तो ऐसा ही एक आभूषण है झुमका। जी हाँ, झुमका, जिस पर हमारे फिल्मी यानी यूं कहीं फिल्मकारों ने और फिल्मी गीतकारों ने बहुत सारे गीत लिखे और पर्दे पर फिल्माए। तो आज उन्हीं गीतों को लेकर हमने इस मैटिनी शो को आपके लिए चुना है। जी हाँ, झुमका। झुमका शब्द आते ही कितने सारे गीत आपके कानों में गूंज गए होंगे ना। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और न जाने ऐसे कितने सारे गीत। जी हाँ, तो झुमका एक आभूषण नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सौंदर्य का प्रतीक भी है। कानों में झूमते हुए और छन छन की आवाज करते हुए ये सुंदर झुमके हर पहनावे की शोभा बढ़ा देते हैं। तो आज मैटिनी शो में ये झुमके कहर ढाने वाले हैं।
1: है किसी का झुमका।

जी हाँ, मिला है किसी का झुमका। तो ये झुमका मिला था फिल्म परख में और आवाज लता मंगेशकर ने दी थी, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत दिया था सलिल चौधरी ने। अब जब बात झुमकों की चली है तो ये तय है कि आपने एक झुमके के बारे में जरूर सोचा है। वही गाना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो जाहिर है, जब झुमका बरेली के बाजार में गिरा होगा तो फिर उस बाजार में जाकर हम झुमका जरूर खरीदेंगे। तो आप भी बरेली के बाजारों से झुमका खरीदने के अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ कई खास डिजाइन के झुमके हमें मिल जाते हैं। अगर हम फिल्मी इतिहास की बात करें तो झुमका गिरा रे गाने ने बरेली के झुमकों को दुनिया भर में मशहूर कर दिया था, है ना। और ये गाना 1966 की फिल्म थी मेरा साया, अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया ये गीत था। और सच पूछा जाए तो ये झुमके आमतौर पर, जो बरेली के झुमके हैं, काफ़ी बारीक नक्काशी और रंग बिरंगी मीनाकारी, मोती और कुंदन के काम के साथ पेश किए जाते हैं। और यहाँ के झुमके देखने में जितने बड़े, भारी और आकर्षक होते हैं ना, असल में उनका वजन बहुत हल्का होता है। और कारीगर इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि भारी डिजाइन वाले झुमके भी कानों में चुभे बिना आराम से पहने जा सके। तो चलिए खरीदते हैं ये बरेली का झुमका।

0: जी, तो मदन मोहन के संगीत निर्देशन में ये था राजा मेहदी अली खान का लिखा गीत। आशा भोसले की आवाज़ थी और ये फिल्म थी मेरा साया। बहुत सारी फिल्मों में झुमकों पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, फिल्माया गया है। और झुमकों की जो दुनिया है ना दोस्तों, भारत की तरह ही विविधतापूर्ण है। हाँ, जहाँ हर क्षेत्र अपनी अनूठी शैली और शिल्प कौशल से इन सदाबहार झुमकों को एक नया आयाम देता है। चाहे आपको बड़े सुनहरे झुमकों की भव्यता पसंद हो या स्टड झुमकों की सादगी भरी खूबसूरती, हर पसंद और अवसर के लिए एक न एक डिज़ाइन मौजूद रहता है। जैसे जैसे फैशन के रुझान बदलते हैं, वैसे वैसे फैशन की प्राथमिकताएं भी विकसित होती रहती हैं और हमारी रुचि भी पनपती रहती है। हाँ, एक बात स्थिर रहती है, वो क्या? वो ये कि नारीत्व, संस्कृति और परंपरा के प्रतीक के रूप में झुमकों का जो आकर्षण है वो हमेशा नारी के मन में बना रहता है। और जब हम झुमका शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्लासिक घंटी के आकार के, आमतौर पे सोने चांदी या बारीक कारीगरी से भरपूर झुमके याद आते हैं। और आजकल तो बहुत सारे जो हैं आर्टिफिशियल झुमके भी हमें मार्केट में मिल जाते हैं। आप चाहें तो कोई भी झुमका अपनी पसंद का ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। हाँ, ये याद रखिएगा, पारंपरिक झुमके कभी पुराने नहीं होते।
1: होय होय होय, कान में झुमके, कान में झुमके, चाल में ठुमके, नैनों में जाल है, हाथ में छल्ला, सर पर पल्ला।

निगाहों ने मार डाला है जान मन तेरी निगाहों ने मार डाला निगाहों ने मार डाला होए होए होए धूप है चंदा जुल्फ है फंदा बंदा बेहाल है हाथ में छल्ला सर पर पल्ला।

0: फेरा तू माझा गली में फेरा
1: काय सांगते
0: बात है पैशाला तू माझा गली में फेरा तू माझा गली में फेरा
2: है जहां नागन फिरेगा वहीं सपेरा फिरेगा वहीं सपेरा।

बिन दिल का ये बंगला पड़ा है सोना, ये बंगला पड़ा है सोना, तेरे बिन दिल का।

जी हाँ, ये गीत फिल्म पायलट ऑफिसर से हमने लिया था और सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया था। आनंद बख्शी के बोल थे, रोशन की धुन थी। तो बात चल रही है आज झुमकों पर, और झुमके तो कई तरह के डिज़ाइन और स्टाइल में आते हैं और हर मौके और आउटफिट के अनुसार चुने भी जाते हैं। जब बात स्त्री की आती है, औरत की पसंद की आती है, तो नारी इन झुमकों को हमेशा प्राथमिकता देती है। और ट्रेंडी झुमके बहुत तरह के बाज़ार में हमें मिलते हैं, जिसे आप खरीद सकते हैं और अपने कहना चाहिए आउटफिट में धारण कर सकते हैं। जैसे चांद वाली झुमका, ये चांद के आकार का होता है और इसके नीचे सुंदर घुंघरू या मोतियां लटकी होती हैं। साड़ी या लहंगे के साथ ये बहुत अच्छा लग सकता है। टेम्पल झुमका, ये साउथ इंडियन स्टाइल के झुमके होते हैं जिन पर देवी देवताओं या पारंपरिक आकृतियों की नक्काशी भी होती है। एक मीनाकारी झुमका है जिन पर रंग बिरंगे फूल और डिज़ाइन की पेंटिंग या नक्काशी की जाती है। एक आता है लेयर्ड झुमका, इनमें एक के नीचे एक कई परतें, लेयर्स या घंटियां लगी होती हैं और एक भारी और भरा हुआ लुक देती हैं। कुंदन और पोलकी झुमके भी आते हैं और ये राजस्थानी और मुगल स्टाइल के शाही झुमके होते हैं जिनमें कीमती पत्थर और रत्नों का काम होता है। इसके अलावा मल्टी चेन झुमका, इसमें झुमके के साथ एक चेन जुड़ी होती है जो कान के ऊपरी हिस्से में पिन हो जाती है, जिससे कानों को एक भारी लुक भी मिलता है और कानों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ता है। इसके अलावा डेलीवियर झुमके, जिन्हें आप रोज़मर्रा के काम में पहन सकते हैं। अगर आप हल्का और छोटा झुमका पसंद करती हैं तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छे होते हैं झुमके। और मोती झुमका यानी पर्ल, ये क्लासी होता है और एलिगेंट होते हैं जिनमें सफ़ेद या रंगीन मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत तरह के झुमके बाज़ार में मिलते हैं। यह आपको सोचना है कि आपको किस तरह की डिज़ाइन इन झुमकों में पसंद है। पर हाँ, देखिए ना, आपको चाहे कोई भी झुमका पसंद हो, लिखने वाले ने यानी फिल्मी गीतकार ने झुमकों के बारे में बहुत खूब लिख दिया है।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: दोस्तों, हमारी फिल्मों में, हमारे फिल्मी गानों में हमारी संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। हमें हर गहने पर कई फिल्मी गीत सुनने को मिलते हैं, पैरों से लेकर सिर तक न जाने कितने महत्वपूर्ण अलंकारों पर हमारे गीतकारों ने गीत लिखे हैं। अब देखिए ना, हम बात कर रहे हैं झुमके की, साथ ही अगर हम बात करें पैरों में पहने जाने वाली चांदी की पायल की, तो ये भी एक लोकप्रिय आभूषण है जिस पर काफ़ी गीत लिखे गए हैं। नहीं नहीं, हम आपको पायल से संबंधित कोई भी गीत नहीं सुनवा रहे फिलहाल, तो हम आपके लिए आज झुमका ही लेकर आए हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि कितने सारे अलंकारों पर हमारे फिल्मी गीतकारों ने इन गीतों को लिखा और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को यूँ आगे बढ़ाया।

कहते हैं झुमका गिरना आसान है, लेकिन झुमके को ढूंढना बहुत गंभीर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम आपको बता दें, एसडी बर्मन का संगीत था, आनंद बख्शी के बोल थे, युगल स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के थे फिल्म जुगनू के लिए। तो बात चल रही है झुमकों की। अगर आज के इस माहौल में हम बात करें तो बहुत तरह के झुमके हमें फैशन के तौर पर मिल सकते हैं। ऑफिस के लिए अगर हम चाहें तो हल्के झुमके जो रोजाना हम पहन सकते हैं, छोटे छोटे झुमके लाइट वेट गोल्ड के, या जो है आर्टिफिशियल झुमके भी आप पहन सकते हैं, पसंद किए भी जा रहे हैं, कुंदन के, पर्ल के, शादी लहंगे, शादी में खास तौर से लहंगे और ख़ास जो कपड़े आप पहनते हैं उसमें आप कुंदन का वर्क किए छोटे छोटे मोती जड़े जो हैं झुमके भी पहन सकते हैं। इसके अलावा सुई धागा ईयरिंग्स भी मिल रही हैं, और ये जो डिज़ाइन है लंबी पतली चेन और नीचे छोटे डिज़ाइन के साथ साथ आती है, जो इंडियन और इंडो वेस्टर्न दोनों तरह का लुक देती है और हमें अच्छी भी लगती है, खासतौर से यंगस्टर्स के कानों में तो ये बहुत अच्छी लगती है। और कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं और कैजुअल जो आउटिंग्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो काले और सिल्वर मेटल के बड़े झुमके मिरर वर्क वाले भी पहन सकते हैं और अपनी सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे।
1: अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं और अब हम हाजिर हैं आपके मनोरंजन के लिए कुछ पहाड़ी लोकगीत लेकर। कार्यक्रम का नाम है देवधरा के लोकगीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: शेर सिंह और साथियों का गाया ये पहाड़ी लोकगीत अभी आपने सुना। देवधरा के लोकगीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। कार्यक्रम का अगला लोकगीत इस अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी, इस अंतराल से पहले जो आप लोकगीत सुन रहे थे वो कर्नेल राणा और साथियों का गाया हुआ था, देवधरा के लोकगीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

0: ऋषि शर्मा अपने
1: जी दोस्तों, तो इसी गीत के साथ जो गाया था पम्मी ठाकुर और ऋचा धीमान ने, इसके साथ ही आज का देवधरा के लोकगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

यू मी और हम, इसी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ें थी। और सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। आइए आप सुनते हैं एक्सपोज फिल्म का ये गीत। आवाज़ें इस गीत में आप सुनेंगे पलक मुच्छल, हिमेश रेशमिया और साथियों की।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम का ये अगला गीत वक्त फिल्म से हमने लिया है आवाजें सोनू निगम, अदनान सामी और साथियों की।

शंकर महादेवन, श्रेया घोषाल, आनंद राज आनंद और साथियों का गाया ये गीत अभी आपने सुना, वेलकम फिल्म का नाम था। सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। और अब आइए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनते हैं जिसे हमने लिया है विवाह फिल्म से। उदित नारायण, श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में आइए सुनते हैं ये गीत।

0: सैनिकों के लिए। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर का 1 बजने को है, अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे। इसी दौरान 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से और 3 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे।
1: कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। जी हाँ, हम आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम लेकर सुरीला सफर। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सुरीला सफर में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जिंदगी का ये सफर उतार चढ़ाव भरे एक खूबसूरत सुरीले गीत जैसा ही तो है, जो अपने अनोखे तजुर्बों और अनुभवों से भरा हुआ है। यानी हर लम्हा एक नई धुन की तरह आता है, जिसमें सुख दुख के सुर मिलकर इस यात्रा को यादगार बना देते हैं, है ना? तो आज का ये सुरीला सफर कितना यादगार बन जाएगा, क्योंकि आज हमारे श्रोताओं ने उस सफर में घुसकर उन गीतों को ढूंढ लिया है जो गीत आज हमने आपके लिए चुने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमने आपको थोड़ा सा क्लू दे दिया था ताकि सरल हो जाए वो बात जो आप चाहते थे, और आपने वो कर भी दिखाया, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम दो महिला गायिकों द्वारा गाए गए गीत पर आधारित है। यानी इनमें दो महिला गायिकाओं ने अपनी आवाज़ दी है, और आप सभी जानते हैं कि हमारी फिल्मों में एक खास जगह रखते हैं वो गीत जहाँ दो अलग अलग महिला आवाज़ें आपस में मिलती हैं और वे गानों में एक अलग ही ऊर्जा और मस्ती और भावुकता भर देती हैं। तो ऐसे कई शानदार गीत हैं महिला जुगलबंदी से में, जो गायिकाओं में अनोखा तालमेल हमें देखने और सुनने को मिलता है। लता जी की बात करें, आशा जी की बात करें, उषा जी की, गीता दत्त की, सुमन कल्याणपुर की, कमल बारोट की, न जाने कितनी ऐसी आवाज़ें हैं आज इस सुरीले सफर में हमारे साथ। और ये सभी गीत, जैसा कि हमने आपको बताया, एक ही संगीतकार चित्रगुप्त साहब, यानी महान संगीतकार चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में गाए गए गीत हैं। तो हमने आपको थोड़ा सा जब ये बता दिया था तो आपने उन गीतों को ढूंढ भी लिया है। हाँ, कुछ श्रोताओं ने कहा है कि भाई अभी भी हम इन गीतों को नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई बात नहीं, आज इस सुरीले सफर में आप शामिल हुई ना हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। चित्रगुप्त साहब का संगीत, प्रेम धवन के बोल, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम है तूफान में प्यार कहाँ।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था तूफान में प्यार कहां। हमारे श्रोता आज बहुत खुश हैं और लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आपने विविध भारती के सुरीले सफर में आज की इबारत को कुछ स्पष्ट करके आसान कर दिया है। जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और बजने वाले गानों का निर्णय हो ही गया समझो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने इबारत की जगह खुद गीतों के शब्द लिख दिए और उसमें ये भी लिख दिया कि सभी गीतों के संगीतकार एक ही हैं और ये सभी गीत दो महिला गायकों के स्वर में होंगे, तो वैसे बहुत मुश्किल तो हो गया है। इबारत में शब्दों को ढूंढकर हम कई गीत सही लिख देते थे, लेकिन आज की परीक्षा मुझे लग रहा है और कठिन है। मैं दावे के साथ लिख रहा हूं कि बहुत ही कम श्रोता ढूंढ पाएंगे, बस एक शब्द गोरी पे दो महिला गायक ही ढूंढ पाया हूं। बाकी गीतों पर नजर दौड़ाई तो संगीतकार भी अलग अलग दिमाग में आ रहे हैं। उफ कर दिया दिमाग का दही। अरे इतना दिमाग को खराब करने की जरूरत थोड़ी है, ये कार्यक्रम तो मनोरंजन का कार्यक्रम है, मनोरंजक कार्यक्रम है आपके लिए, है ना। इसमें हमें अपने दिल और दिमाग को बहुत ही शांत और सुकून से भरा रखना है, तभी तो ये सफर सुरीला बन पाएगा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने इबारत पर से इबारत न लिखकर सभी श्रोताओं की इच्छाओं को साकार कर दिया है। खूब अच्छा लगा, जो बात हम चाहते थे वही हो गई। आज मैं गीत सूची तैयार न करते हुए सिर्फ जो गीत बजने वाले हैं उसे सुनने का लुत्फ उठाऊंगा, क्योंकि जो गीत सुनवाए जाने वाले हैं उसके संगीतकार चित्रगुप्त होंगे, जो मेरे पसंदीदा संगीतकारों में से एक है। बचपन से इनके रचे गीत सुनकर मेरे दिल की धड़कन रंग लाती है, आपके दिल की धड़कन भी रंग लाती होगी। ये विविध भारती के दायरे, ये दोपहर का समा, ऐसे में क्यों न जुड़ जाए हम वहां, मिलते हैं दोपहर एक बजे। क्या बात है, हमारे जो श्रोता हैं वो गीतकार भी बन गए हैं लगता है, और शायर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ श्रोताओं के और हम पढ़ेंगे विचार, जहां उन्होंने कुछ गानों को बिल्कुल सही रूप से समझा है। ये गाना है फिल्म परदेसी का, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की ही हैं, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार वही चित्रगुप्त साहब।

जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अपने विचार लिखे हैं और खुश भी हैं कि आज थोड़ी सी तब्दीली उन्हें अच्छी लगी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, उन्होंने अपनी हर एक फिल्म को अद्वितीय ढंग से मेलोडी प्रदान की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज हम आपके साथ रहेंगे, अभी हमारा मन कुछ उदास सा है, क्यों भाई? तो लिखने का मन नहीं है, पर हाँ, आज के पेपर को सरल कहें या कठिन समझ में नहीं आ रहा है। ये ज़रूर है कि यदि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पेपर सरल हो ही जाएगा, और अगर साथ में आप हैं तो इतने काबिल श्रोताओं का तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वैसे भी हम सब विविध भारती की पाठशाला में रोज़ इतना कुछ पढ़ते हैं कि सवाल के जवाब न भी दे पाएँ ऐसा हो नहीं सकता, ज़रूर देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये जो रोचक परिवर्तन किया गया है, इससे श्रोताओं को आसानी हुई है और उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। अब किसी को एग्जाम का अनसीन पैसेज हल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दो गायिकाएं तो लता मंगेशकर और आशा भोसले ही हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी शंकर जयकिशन में से एक लग रहे हैं, बाकी श्रोता अपना दिमाग लगाएंगे। इस परिवर्तन से मैं आज खुश हुआ हूँ और विविध भारती का आभारी हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज एकदम अनोखा, निराला और अभिनव प्रयास किया है आपने, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कार्यक्रम में विविधता ही उसकी पहचान बनती है, जो बरबस श्रोताओं को खींच लाती है और श्रोतागण भी आनंद पूर्वक हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम में हमेशा विविध भारती अव्वल रही है, याददाश्त और दिमाग की कवायद सभी की शुरू हो चुकी होगी। देखें किन किन सौभाग्यशालियों के हाथ बटेर लगती है। दिलचस्प कार्यक्रम का बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने संगीतकार चित्रगुप्त के संगीत से सजे लग रहे हैं। तेरी आंखों में प्यार मैंने देख लिया, गौरी तू लाख छुपा, आपने कई गानों का यहाँ जिक्र किया है, तो सुनिएगा आज की गीतमाला आपकी गीतमाला से मिलती है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर लगता है बहुत आसान है पर बहुत कठिन है। मुझे ज्यादातर गानों के बारे में पता चल गया। एक बात बता दूं, सभी गानों के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, अब गाने और फिल्मों के नाम भी इन्होंने बताए हैं, तो आप देखिएगा आपकी जो ये प्लेलिस्ट है उससे हमारी प्लेलिस्ट कितना मिल खाती है, बताइएगा और लिखिएगा, हमें इंतज़ार है। ठीक है, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़ा अलग सा दिमाग की परीक्षा लेने वाला सुरीला सफ़र है। ये अंदाज है कि आज चित्रगुप्त जी के संगीत निर्देशन से हमारा सुरीला सफ़र तय होने वाला है। आपने भी कुछ गीतों के नाम लिखे हैं और उनका जिक्र किया है, तो पता लगाइए आज हमारी पसंद क्या आपकी पसंद से मिलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस भीषण भरी गर्मी में विविध भारती के नीचे मधुर गीतों के जरिए शीतलता मिलेगी और ये सफर सुहाना होगा, बिल्कुल सुहाना होगा ये सफर इस गीत के साथ। और इस गीत के बाद मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी जिसका उत्तर भी आपको तैयार रखना है। उषा मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है नई जिंदगी, प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त का संगीत।

तो ये गीत आपको कैसा लगा? सुंदर गीत लगा ना, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और हमारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं, आप लिखते हैं कि संगीत का ये सफर वाकई बहुत सुरीला और दिलचस्प है। आपने जो सुराग दिए हैं, एक ही संगीतकार, दो महिला गायिकाएं और ये 12 विशिष्ट शब्द, ये सीधे तौर पर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम यानी गोल्डन एरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन शब्दों और शर्तों को जोड़ने पर जो नाम सबसे ऊपर उभरता है वो है संगीतकार ओपी नैयर साहब का या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी नहीं, आज हम आपको एक ही संगीतकार जो कि चित्रगुप्त साहब हैं, उन्हीं से जुड़े गीत सुनवा रहे हैं। यानी चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में आज जिन दो महिला गायिकाओं ने जुगलबंदी की वो गीत हमने आपके लिए चुने हैं। फिर भी आपने प्रयास किया, सबसे बड़ी बात यह है। आप लिखते हैं कि आशा भोंसले और गीता दत्त की जोड़ियां हैं, इस तरह के बहुत सारे सदाबहार गाने हैं जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है। और आपने कुछ गानों का जिक्र किया भी है। देखिए, आपके गाने हमारे गानों से कितना मेल खा रहे हैं, गौर कीजिएगा और हमें लिखिएगा जरूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चित्रगुप्त सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे उस सुकून, ठहराव और मेलोडी का नाम है जो आज भी रेडियो पर बजने पर हमें एक खुशनुमा जमाने में वापस ले जाते हैं। महान संगीतकार चित्रगुप्त भारतीय सिनेमा के वे अमर गायक शिल्पी थे जिन्होंने बिना किसी भारी भरकम वाद्य यंत्रों के शोर के अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली धुनों से संगीत को नवाजा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार तो चित्रगुप्त हैं और प्रत्येक गाना दो फीमेल सिंगर्स का गाया हुआ है। आपने भी कुछ गाने लिखे हैं? बिल्कुल, आपके गाने हमारे कुछ गानों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। देखिए कौन कौन से गाने हैं, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में इबारत से कुछ चीजें स्पष्ट करके आसान किया है आपने, जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और गानों का निर्णय हो ही गया, समझो। अरे वाह, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, सरल नहीं कठिन है आज की गीतमाला, आपके दो प्रश्नों से ज्यादा भी कठिन है। अरे, अभी तो दो सवाल हमारे आए ही नहीं है, कैसे कठिन हो सकती है? आज तो हमने आपको शब्द दे दिए थे और साथ ही बता दिया था कि एक ही संगीतकार पर केंद्रित है ये शब्द और दो गायिकाओं पर, मतलब दो जो जुगलबंदी है महिला गायिकाओं की जुगलबंदी होगी, कितना सारा तो बता दिया था आपको और हमारे कई श्रोताओं ने पकड़ भी लिया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज का सुरीला सफर ने दिमागी तापमात्रा बढ़ा दी है, संभावित गानों का शब्द अनुरूप कयास लगाना कष्टप्रद है, इन्हें ढूंढने में श्रोता बंधुओं के कमेंट्स कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं के लिस्ट के अनुसार ही हम भी चलने वाले हैं। चलिए, तो आज के दो सवाल, वैसे दो सवाल नहीं है लेकिन इन्हीं इन्हीं सुरीले सफर से जुड़े ये सवाल हैं। चूंकि आज आप सुन रहे हैं कुछ गीत, तो इनसे इतर आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसे मुझे एक गीत बहुत पसंद है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम बहुत याद आए, है ना ये गीत, जहां आरा फिल्म का लता मंगेशकर और आशा भोंसले की जुगलबंदी है। तो इस तरह के और भी गीत जो हैं महिला जुगलबंदी वाले गीत, वो आपको कौन कौन से गीत पसंद हैं या याद हैं, उसका जिक्र जरूर करें। और एक सवाल हमारा ये है कि संगीतकारों के बारे में बताइए, ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो गीत आपको पसंद हैं, जैसे कि आज हमने चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जुगलबंदी गीत लिए हैं। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत गवाए हैं, आप बताइए कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो आपको पसंद है या उनके गाने आपको याद हैं। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर के इस गीत की ओर। चित्रगुप्त साहब का संगीत पंडित भरत व्यास के बोल हैं, सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाजें हैं इस बार। फिल्म का नाम है महाभारत।

आज की सवाल एक बार फिर से दोहराए देते हैं। पहला सवाल हम आपसे ये कर रहे थे कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने अपनी पसंद का गीत आपको बताया, फिल्म जहां आरा का लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया वो गीत, जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, है ना। ठीक उसी प्रकार और भी बहुत सारे गीत हैं, तो आपको कौन सा गीत पसंद है या बताइए कौन कौन से गाने पसंद है। और एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इसका जवाब

जाएगा और श्रोता दिमाग पर कमजोर डालें, सुरीले गीतों का आनंद लें और गीत भी पहले से अधिक बजेंगे। धन्यवाद विविध भारती, धन्यवाद मुझे। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है कि हमें बुरा लगे या हमें गुस्सा आ जाए या हम तनावग्रस्त हो जाएं। बिल्कुल मनोरंजक कार्यक्रम है ये, आपके मनोरंजन के लिए इसका आनंद उठाइए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये बहुत अच्छा नया प्रयास है, शब्द आपने दे दिया और हिंट भी दे दिया है, तो कोशिश भी हमारी बनी रहेगी। और वहीं आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि लगता है आज आपने यू टर्न मार दिया है, सुरीला सफर का ये पैटर्न भी अच्छा है। अब फिर परीक्षा होगी, जानकारी बता पाएंगे, चलो चलें सुरीले सफर पर मंदाकिनी जी के साथ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गेंद आपने डाली है वो गूगली जैसी लग रही है, लेकिन यॉर्कर भी हो सकती है या फिर वाइड हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, ज्यादातर बल्लेबाज असमंजस में है। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं आज तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आप लोग, देखिए ना फटाफट हमारे कुछ श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही गाने चुने हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं होता उन सभी गानों का जिक्र यहाँ करने का, वरना आपको बताते कि आज बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने सही चुने हैं। एक श्रोता ने लिखा है आज शायद यही गाने बज पाने वाले हैं, बेहद अच्छा, आज शायद यही गाने बजेंगे। आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, बेहद हिम्मत वाला काम है, अगर ऐसे गाने शामिल होंगे तो कार्यक्रम की रोचकता बनी रहेगी और कुछ हर रोज बजने वाले गानों से अलग सुन सकेंगे। बेहद नायाब चयन है, आपने हमें धन्यवाद दिया है और बिल्कुल आपके कुछ गीत तो हमारे प्लेलिस्ट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी श्रोताओं को जो आज की जो सुरीला सफर की ये प्लेलिस्ट है उसमें आप शामिल हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार चित्रगुप्त मखमली धुनों और सादगी के मसीहा थे, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जहां एक तरफ शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एस जी बर्मन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, वहीं एक ऐसा संगीतकार भी था जिसने बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी और गहराई से भरपूर संगीत दिया। उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनके गीतों की मिठास आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल सही कहा, और वही मिश्री घोलने वाले गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, इस बार आवाजें हैं गीता दत्त और उषा मंगेशकर की, और ये फिल्म है माँ बाप।

जी, कितना खूबसूरत गीत था, है ना। अच्छा, इस गीत को आपने पहले कभी सुना था, बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वे आज तो भैया इस भरी गर्मी में थोड़ी सी भी यदि ठंडाई की बात करूं तो वो है विविध भारती, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में, अच्छा मैं आई हूं तो गानों की बौछार होगी। गानों की बौछार तो हमेशा ही होती है और मन आनंदित होगा। सचमुच कल की गीतों भरी कहानी सुनी जिसमें एक ऐसा प्रसंग आया जहां मुझे रोना ही आ गया था। धन्य विविध भारती जो ऐसे प्रसंग लाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला गाना एकदम अनसुना सा था, यहाँ तक कि सिनेमा का भी नाम नहीं सुना था। तूफान में प्यार कहां, सिर्फ विविध भारती के पास ही ऐसा कलेक्शन हो सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सबसे अलग होता है, इस महारथी आपको ये महारत आपको हासिल है। अच्छा, मुझे बहुत शानदार सुंदर, क्योंकि सुने कौन सा संगीत, गीतों से हम भीषण गर्मी में ठंडक महसूस कर रहे हैं, मस्ती और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं आपको मुझे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज परीक्षा में पेपर अनुमान से ज़्यादा आसान आ जाता है तो खुशी के मारे जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं। दूसरे आसान पेपर की मार्किंग भी हार्ड होती है। श्रोताओं में बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। अब नंबर देना आपके हाथ में है, देखें आप कितना लिबरल रहती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुरीला सफ़र की पोस्ट का इंतज़ार किया, फिर मैं अपनी नौकरी के लिए निकल गया। 10:30 बजे नौकरी पर पहुंचकर कुछ घंटे काम किया, उसके बाद 12 बजे मैंने सुरीला सफ़र की देखी, फिर श्रोता मित्रों की पोस्ट देखी, तब मालूम पड़ा आज सुरीला सफर महान और अमर संगीतकार चित्रगुप्त जी पर केंद्रित है, साथ में 2 गायिकाओं पर भी। दुकान पर पहुंचकर गीतों को, शब्दों को पढ़ा, मेरे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने हमारे इस सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारे गीत लिखे हैं, गोरे गोरे और बांके छोरे, लता मंगेशकर और समाधि फिल्म का आपने ये गाना लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में प्रेमलता हैं इनके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। वहीं एक श्रोता ने दूसरे गाने लिखे हैं, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज़ में जो जुगलबंदी वाला गीत है, लिखते हैं ये गाना मेरा फेवरेट है, फिल्म उत्सव का, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा और मेरे महबूब में क्या नहीं अपलम चपलम, ये सभी गीत मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत सही आपने गीतों का चयन किया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता बताएं कि कौन से ऐसे गीत हैं जुगलबंदी वाले, महिला जुगलबंदी वाले जो उनको पसंद हैं, उनका जिक्र वो करें, साथ ही उन संगीतकारों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने संगीत निर्देशन में ये महिला जुगलबंदी वाले गीत लिए हैं और संगीतबद्ध किए हैं। जैसे आज हमने चित्रगुप्त साहब को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेम धवन का लिखा ये गीत सुनते हैं। चित्रगुप्त साहब की संगीत रचना है, सुमन कल्याणपुर और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। ये फिल्म है गेस्ट हाउस।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा लता जी और कमल बारोट की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है। वहीं मन क्यों बहका लता जी और आशा जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और ए काश किसी दीवाने से हमको भी मोहब्बत हो जाए। अच्छा, ए काश किसी दीवाने को है हमसे भी मोहब्बत हो जाए। आप में से और को का थोड़ा सा अंतर कर दिया है। और ये गीत भी आपको पसंद है, लता मंगेशकर और आशा भोंसले का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत बद किया हुआ है। वहीं आप लिखते हैं तुमको पिया दिल दिया और कजरा मोहब्बत वाला और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। ये सभी गीत आपको बेहद पसंद है, बहुत सुंदर गीतों का चयन आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन रात जले अखियां परदेसी, उषा मंगेशकर और आशा भोंसले, ये गीत हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत निराला है और बहुत बढ़िया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने कमाल की गुगली फेंकी है। अच्छा, आपने हम तो क्लीन बोल्ड हो गए, आज हमारी बत्ती गोल डब्बा गोल है। आप तो बस मधुर गीतों का रसा स्वादन कराइए और हम मधुर गीतों का आनंद लेने वाले हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें सफ़र में तो सफ़र सुरीला कैसे नहीं होगा, अगर आप हैं हमारे साथ तो आज आप आई प्रोग्राम में तो गीतों की बाहर आ गई है। आप लिखते हैं कि ओ गोरे बांके छोरे गीत पसंद है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद है जो दो गायिकाओं द्वारा गाए गए हैं। साथ ही आपने लिखा है एक श्रोता ने कि मनभावन के घर गाए जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, लता जी और आशा जी की आवाज़ में, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतों की चॉइस कितनी बड़ी है, मन बहुत खुश हुआ। अच्छा, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही बढ़िया है, दो फीमेल गायिकाओं के गीत कितने बढ़िया और कितने ताल सुर में, परदेसी का गाना सुन के बहुत ही बढ़िया लगा, चित्रगुप्त जी का संगीत बोले तो बहुत मधुर संगीत, क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी थीम कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी हो हम आपको विविध भारती जरूर सुनेंगे, इस तपतपाती गर्मी में गानों के जरिए ठंड का एहसास हमें थोड़ा तो होगा। आप इतनी शिद्दत और प्यार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। चलिए अगला गीत सुनते हैं, चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में, इसे आर कृष्णा ने लिखा है। इस बार स्वर है गीता दत्त और उषा मंगेशकर के और ये फिल्म है कंगन। हमने शब्द दिया था लिख पढ़, वही है ये गीत।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गीत हम सुन रहे थे फिल्म गेस्ट हाउस का सबसे शानदार गाना शीला वाज और अन्य अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कितनी खूबसूरत और गहरी जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप चाहे मना करें, मैं आपकी तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आज यादों की महफिल में मेरे तीन पसंदीदा गाने एक साथ सुनवाए गए। कुछ दिल ने कहा जीत ही लेंगे बाजे हम तुम और मैं ये सोचकर जा रहा था। बिल्कुल, ये गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे और कैफी आजमी की रचनाएं थी, तो पसंद तो होंगी आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदगी के महिला युगल गीत में एक इन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया है, सखी रे सुन मोरी पपीहा उस पार। अच्छा, फिल्म मिस मैरी का ये गाना आपको बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात तू मुझे क्या बताइए गाना पसंद है। गर्जत बरसत सावन आयो रे और बरसात की रात फिल्म का जो एक जमाने में उसका अंश संगीत रचना के परिचय धुन में शामिल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश हैं और काफी हंसमुख लग रही हैं। अच्छा और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वहीं एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना काश किसी दीवाने को और आएगा हमारे गाँव कोई आएगा, इन सभी गीतों को पसंद किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है मन क्यों बहका रे बहका और हुजूर आला जो इजाजत हो, ये युगल महिला गीत वाले जो स्वर गीत हैं ये हमें बेहद पसंद आते हैं। जी, तो आज के सुरीला सफर में

हमने आपके सफर को थोड़ा सा आसान कर दिया और आप लगभग हमारे साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत। ये है आशा भोंसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल हैं, चित्रगुप्त साहब का संगीत है और ये फिल्म है ज्वाला दहेज की।

जी तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मेरे पास करीब 20,000 गानों का संग्रह है और लगातार पुराने गीतों को ढूंढकर संग्रह को मैं और बढ़ा रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ताथैया करके आना मेरे जादूगर, ओ सैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, इकबाल कुरैशी, फिल्म पंचायत का गीत और कौन रंग मुंगवा लता मंगेशकर और सुधा मल्होत्रा का, संगीतकार रोशन साहब और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो पहली बार सुना है, वैसे मुझे डोला रे डोला फिल्म देवदास का गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह, मेरा एक गीत मैच कर गया है, निकला है गोरा गोरा चांद रे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला शमशाद बेगम और आशा भोंसले की गायकी बहुत पसंद है। युगल गायिकाओं में कुछ लोगों ने अपलम चपलम, हंसतावा नूरानी चेहरा, तेरी महफिल में किस्मत आजमाकर, मन क्यों बहकाई सभी गीतों को पसंद है किया है। और वहीं एक श्रोता ने कहा, आपने पूछा कि कौन से युगल गीत पसंद है, फिल्म शिकारी का युगल गीत तुमको पिया दिल दिया, फिल्म पारसमणि का गीत हंसतावा नूरानी चेहरा, उत्सव का गीत मन क्यों बहकारी बहका हमें बेहद पसंद आता है। चलिए तो आपकी पसंद को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब है। और अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को फिल्म हम मतवाले नौजवान में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, चित्रगुप्त का संगीत।

तो दोस्तों, आज का सुरेला सफर यहीं तक, और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: After its website experienced unprecedented traffic over the past few days, along with several attempts of unauthorized interference, making it prone to disruptions. The board informed that the students will have up to 2 days to apply for the next stage of verification of marks or re-evaluation after receiving the scanned copy of their answer books. The CBSE has advised candidates to make use of the extended timeline and complete the process accordingly. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step towards strengthening bilateral ties and expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology, and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the Kolkata airport. Soon after his arrival, the U.S. Secretary of State visited Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Secretary Rubio will call on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties, and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue Quad framework. Tomorrow, Mr. Rubio will hold talks with External Affairs Minister S. Jaishankar and attend the U.S. Embassy's Independence Day celebrations in the national capital. The World Health Organization, WHO, has raised the public health risk of the Bundibugyo strain of Ebola in the Democratic Republic of the Congo from high to very high at the national level. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the risk is now assessed as very high nationally, high regionally, and low globally. He added that 82 cases and 7 deaths have been confirmed, but the outbreak is likely much larger, with nearly 750 suspected cases and 177 suspected deaths reported so far. The WHO had earlier declared the outbreak a public health emergency of international concern, while clarifying that it is not at the pandemic level. Indian Oil has reassured customers and the general public that there is no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature, arising due to local demand-supply imbalances and redistribution of sales patterns in select areas. Indraprastha Gas Limited, IGL, increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kg CNG in the national capital is 81 rupees and 9 paise. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for heatwave to severe heatwave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. According to the IMD, heatwave conditions are expected to persist over large parts of northwest, central and eastern India over the next 6 to 7 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over the next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for Class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lovely Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है. बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
3: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित दो स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
5: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
6: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी SN त्रिपाठी ने।

एक दुल्हन के तरह शर्माती, तू नहीं है तोरा तो सुनी है, इश्क की गाय ना तो सुनी है।

0: साहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी। मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ें थीं। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म का नाम था साधना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथी फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। गीतकार हैं पी एल संतोषी और संगीतकार एन दत्ता।

कोई मना ना कोई मारे कोई किसी को ना कोई खाए मांस किसी का ना कोई पीवे खून किसी का ना कोई रोके का।

0: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
1: हम आएंगे,
2: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
3: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटका।

लीजिए, कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज, और ये फिल्म है मधुमति। शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सख्यू की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोंसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है चंपाकली।

0: आशीष शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया और कहा कि अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। पूरे देश से चुने गए ये नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। प्रदेश में 3 चरणों में 26, 28 और 30 को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। 26 मई को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार 24 मई को समाप्त हो जाएगा। प्रदेश में 28 व 30 मई को दूसरे और तीसरे चरण के पंचायती राज चुनाव होंगे। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। प्रदेश पुलिस चिट्टे के खिलाफ 5 जून को शिमला में एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन करेगी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने शिमला में कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और आमजन को नशे के विरुद्ध एकजुट करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश पुलिस ने एंटी चिट्टा अभियान के तहत नशा उन्मूलन और स्वस्थ समाज निर्माण के संदेश को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस चिट्टा के खिलाफ अभियान तेज करेगी। अशोक तिवारी ने कहा कि यह अभियान प्रत्येक प्रतिभागी को नशे और पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता का दूत बनाने का प्रयास करेगा। राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों में समय पर वेतन न मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज निगम के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर चालक परिचालक यूनियन के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर 1 जून तक निगम के कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन नहीं आया तो कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। वर्कशॉप कर्मचारियों ने भी वेतन न मिलने पर टूल डाउन की चेतावनी दी है।
2: अन्य कर्मचारियों की तरह एचआरटीसी का कर्मचारी भी चाहता है कि उन्हें भी 1 तारीख को सैलरी मिले, लेकिन क्या कर्मचारी को कभी समय से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया है कि यदि 1 तारीख साए 5 बजे तक कर्मचारियों का वेतन उनके खातों में नहीं डाला गया तो रात 12 बजे से सभी लोग जो है अपना कार्य बंद कर देंगे और जब तक हमारी सैलरी हमारे खातों में नहीं डल जाती तब तक हम कार्य नहीं करेंगे।
0: प्रदेशवासियों को एक बार फिर जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 26 व 27 मई को राज्य के 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार 25 मई तक राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। विभाग ने इस दौरान प्रदेश के मध्यम व ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है। इस बीच बीते रोज राज्य के अधिकांश स्थानों पर हुई वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी से प्रदेशवासियों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद लीजिए पेश है कांगड़ा जिला की चिट्ठी। लेखक हैं विपिन शर्मा। और वाचक स्वर राकेश शर्मा का है।
0: जिला कांगड़ा में शिक्षा, संस्कृति, खेल, प्रशासन और लोकतांत्रिक गतिविधियों को लेकर बीते दिनों कई महत्वपूर्ण आयोजन हुए। पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के 2 दिवसीय 19वें राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने किया। दीप प्रज्वलन तथा महर्षि वाल्मीकि और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे सम्मेलन सामाजिक संवाद को मजबूत करने और समाज को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने समाज में एकता, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए

0: सामाजिक समरसता और समावेशी विकास अनिवार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने दसवीं और जमा दो कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। जमा दो परीक्षा का कुल परिणाम 92.2% रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों संकायों के परिणाम एक साथ घोषित किए गए। वहीं दसवीं कक्षा का परिणाम 83.87% दर्ज किया गया। कांगड़ा जिला की छात्राओं और छात्रों ने दोनों परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया। दसवीं में कांगड़ा की छात्रा अनमोल ने 700 में से 699 अंक लेकर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। जमा दो आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम में भी कांगड़ा के विद्यार्थियों ने शीर्ष स्थान पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाइव मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की गई और नकल के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई। न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जिला कांगड़ा के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा द्वारा आयोजित इस लोक अदालत में 10,000 से अधिक मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया, जिनमें से 5,429 मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा हुआ। विभिन्न मामलों में 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अवार्ड पारित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह भी जानकारी दी कि आगामी अगस्त माह में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत आयोजित होगी, जिसमें समझौते योग्य मामलों का समाधान संवाद और सहमति के आधार पर किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक और वैचारिक गतिविधियां लगातार जारी हैं। पत्रकारिता, जनसंचार और नव मीडिया स्कूल तथा विश्व संवाद केंद्र शिमला के संयुक्त तत्वावधान में देवऋषि नारद जयंती के अवसर पर विशेष अभियान व्याख्यान आयोजित किया गया। कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने कहा कि देवऋषि नारद विश्व के प्रथम संचारक थे, जिनका उद्देश्य सदैव लोकहित और सत्य आधारित संवाद स्थापित करना था। उन्होंने आधुनिक पत्रकारिता में मूल्यों और नैतिकता के महत्व पर बल दिया। इसी क्रम में विश्वविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण एक अंतर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन भी किया गया। वक्ताओं ने मानसिक स्वास्थ्य के वैश्विक और भारतीय दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए योग, आयुर्वेद और सांस्कृतिक जीवन शैली के महत्व को रेखांकित किया। उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत एनआईटी पुडुचेरी के 48 छात्र और 5 फैकल्टी सदस्य हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंचे। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान छात्र हिमाचल की संस्कृति, पर्यटन, तकनीकी विकास और सामाजिक जीवन को नजदीक से जान रहे हैं। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि भारत की विविधता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और ऐसे कार्यक्रम युवाओं के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करते हैं। खेल जगत में भी जिला कांगड़ा के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला की खिलाड़ी निकिता चौहान और सिमरन कंबोज ने चीन में आयोजित 6ठे एशियन बीच गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। धर्मशाला लौटने पर दोनों खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय धर्मशाला केंद्र की आधुनिक सुविधाओं, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में जिला कांगड़ा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा के अनुसार जिला की लगभग 850 पंचायतों में 12 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव 3 चरणों में आयोजित होंगे। प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वहीं नगर निगम धर्मशाला की चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जिसमें 60% मतदान दर्ज किया गया। महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही। नगर निगम पालमपुर में भी मतदान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई, जहां लगभग 69% मतदान रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही कांगड़ा जिले की चिट्ठी संपन्न हुई। नमस्कार।
1: अभी आप कांगड़ा जिला की चिट्ठी सुन रहे थे। लेखक थे विपिन शर्मा और वाचक स्वर राकेश शर्मा का था। इसे
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रही हैं। FM बैंड 101.8 MHz पर दिन के 3:10 हुए हैं। अब से लेकर 5 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे। ये संग है, उमर भर

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने की ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा, और ये खत आया है हैदराबाद से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रावलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान के बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से, जिला धमतरी से, चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद से, बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनुजा तांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज

बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडुसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।

0: रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजयमाल।
1: सब यथास्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश ले

0: कराया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
2: महाराणा की जय।
3: राणा हाड़ा जी ने ये पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी, अन्नदाता, पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।

0: आपत्ति हो सकती है। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
1: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
0: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
1: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
0: महाराज,
1: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
0: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सूखते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
1: चूड़ावत जी,
2: महाराणा,
1: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
2: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है, वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
1: हम आपको यह चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
3: जी, महाराज,
1: राणा हाड़ा को यह शुभ संदेश दे दो कि हमें यह संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
0: जी महाराणा।
1: सामंत चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
0: जो आज्ञा महाराज।

Ah!

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखला मी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल कहाँ है तेरी भाभी।
0: अरे तारा, कहाँ चली गई? सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा, तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामंत, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे
3: यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधू इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधू जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा दे।

0: और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
1: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरू, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ
1: अरे अरे,
0: बुलाओ भैया।
1: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन जी, भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
2: जी हाँ, सामंत तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
2: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है, और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है, आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई, अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं। कौन?
3: स्वागत है।
2: ओह आप यहाँ?
3: हाँ जी, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
2: ना,
3: हाँ, ना। अब ठीक है, हाँ, देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
2: स्वामी, मेरे देवता,
3: सच
2: मैं तुम्हारी पुजार।
4: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
3: तुम सच मुझे कितनी सुंदर हो, चंद्रमुखी, और मैं तुम्हारा पागल चकोर, ये चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
2: स्वामी हमारे महाराणा से छोड़े इस पागलपन को,
3: रानी,
2: और सुनिए,
3: रानी, प्रिय, तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया हूं।
2: स्वामी,
3: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान हूं, मुक्त हूं।
2: सुना आपने?
3: इधर,
2: स्वामी,
3: प्रिय,
2: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
3: प्रिय, मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई हो?
2: स्वामी सुनिए नगाड़े की ध्वनि, राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
3: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
2: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
3: प्रियतम,
2: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
3: प्रिय, जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो, विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के

0: मधुर हास्य में कठोरता का अट्ठास और संगीत की मधुर लहरी में यह भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका। सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
1: स्वामी, यह केवल आपका मोह और वासना है।
0: रानी,
1: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
0: रानी,
1: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
0: हाँ रानी, मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी ना हुई थी। क्या करूं?
1: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
0: रानी ठहरो,
1: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
0: हूँ। ठहरो रानी,
1: यह हर वंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है। मैं जाती हूँ।
0: रानी ठहरो।
1: नहीं
0: रानी, सुनो तो।
1: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर यह कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलिया मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधुर सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं, नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
0: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
1: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बाला के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामंत की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
0: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
1: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
0: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो। मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
1: ना,
0: तो तुम्हारा ये रूप यौवन
1: और... ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
0: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
1: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य दे।

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओ, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृ कुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा, देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रही है? इस हाड़ जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी, ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा,
4: आई आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
2: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार तेरी सहायता चाहती हूँ।
4: ये क्या कर रही है?
2: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर तारा।
4: रानी जी, रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ। पगली,
2: रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिकता कर, रण सिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला, ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे। हाँ, ऐसे। दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे, अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे फिर रोती है? ला ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस अब बहुत विलंब हो रहा है, ठहरिए रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है।

मेरा भग्न शेष रण सिंह को दे देना और कहना कहना रानी ने वह विजय मार समझ के लिए दी है। विजय मार

0: तारा तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी लीजिए, हाड़ी रानी ने सामंत के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख ले और सामंत तक शीघ्र पहुंचा दे।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
2: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
2: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
2: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
2: रणसिंह, ये क्या लाए हो?
3: हाड़ी रानी का भग्न शीश, ये क्या किया तुमने रणसिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे।
3: रणसिंह, मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
2: हाड़ी रानी, तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण से। मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो। मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है। भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों, आगे बढ़ो,
4: विजय हमारी है।
5: Let's go.

0: बादशाह की सेना उल्टे पैर भाग रही है।
1: सच रणसिंह, हम विजयी हुए?
0: हाँ सामन, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामन,
1: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
0: मैं चाहता हूँ सामन, आप कहाँ दौड़े जा रहे हैं? सामन ठहरिए, ठहरिए सामन।
1: रानी, सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो, रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा
2: जी। सामंत,
1: रानी जी कहां है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
2: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
1: हाँ, रानी मेरी हाड़ी, रानी मेरी विजय माल

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना, प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल

0: पूजा है उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए, तो उन्होंने मुझे
1: अच्छा
0: ऑडिशन लिया। पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था, तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में यस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन, तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
1: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहां से शुरू नहीं
0: नहीं होती
1: होती,
0: है
1: तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की
0: जी
1: तरफ।
0: जी
1: आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था, और अपने माता पिता के बारे में
0: जी
1: बताइए।
0: जी सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम है पहरा।
1: क्या बात
0: सो
1: है।
0: मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है इश्क और भी गहरा हुआ है।
1: ओहो
0: तो मैं काफ़ी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं,
1: हाँ।
0: तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा,
1: अरे
0: और मुझे
1: वाह
0: पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है, और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश मैं सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था।
1: वाह,
0: देशर पटरिया के गाना और उर्मिला पांडे जी के गाने
1: अरे
0: और भी
1: क्या
0: बहुत सारे
1: बात
0: लोगों के
1: है।
0: गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता, और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे, और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे, और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती, मैं आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे, और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे, तो
1: अच्छा,
0: ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हज़ार रुपये उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें, तो उन्होंने
1: हाँ,
0: सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
1: अरे वाह वाह,
0: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब
1: ओके,
0: बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। तो फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था, तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-2-3-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था, और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को
1: अरे
0: कि गाने के
1: वाह।
0: आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला, जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है जिनमें मेरे
1: अपने घर के
0: पिताजी
1: ही
0: भी थे,
1: चबूतरे में हुआ।
0: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया, और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए।
1: वाह वाह।
0: सो मैं ये बोलूँगा कि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है, और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से, ऐसे जय
1: हाँ,
0: जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोलें तो हम, बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
1: कितने दूर है छतरपुर से ये गांव?
0: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पर पड़ता है, तो बसारी के
1: अच्छा,
0: आगे है पहरा,
1: ओके।
0: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर,
1: तो
0: बहुत ही।
1: कितनी क्लास तक वहां पढ़े आप?
0: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओ रे, बुंदेली फिल्म थी।
1: हाँ,
0: उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से, उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय
1: अरे
0: तक,
1: वाह,
0: जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जीजाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका,
1: क्या
0: टाइटल
1: बात है।
0: सॉन्ग था उसका।
1: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है,
0: उस
1: लोकगीत?
0: पे ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी,
1: हाँ,
0: तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे, कहाँ ले आए
1: उपटा लगत उंगरिया,
0: उंगरिया,
1: क्या
0: मतलब
1: बात
0: ना
1: है।
0: कहाँ ले आए राजा की
1: क्योंकि
0: पहाड़िया में,
1: मतलब
0: लाइक
1: बुंदेलखंड,
0: कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए, ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है। ये
1: हाँ,
0: पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया

0: रे कहाँ ले आए, कहाँ ले आए राजा पहाड़िया, मेरे कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बम्बई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि, बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
1: हाँ
0: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो
0: तो
1: मजा आ गया मुझे सुन
0: बहुत ही
1: के
0: मजा आ गया, मतलब बहुत
1: तो।
0: मजा आ गया। तो
1: हाँ
0: यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे MP के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद,
1: अरे
0: और
1: बाबा
0: मैं नाइन्थ
1: रे,
0: क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक है।
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हमारे छोटे
1: अच्छा
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे, हमारे
1: हाँ
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
1: तो
0: लाइक
1: बुंदेली में था ये।
0: अब बुंदेली में नाटक था। अब
1: हाँ
0: मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है, क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा, तो
1: हाँ
0: उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया, इस तरह का जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ।
1: वाह।
0: तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ, फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई। खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफ़ी
1: ओ
0: बड़े
1: वो तो
0: एक्टर हैं,
1: पन्ना के ही
0: जो
1: है।
0: पन्ना के ही हैं। तो
1: हाँ
0: वो NSD से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे। हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5 स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उनने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2 2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहाँ पे 1 महीने रहना है।
1: हाँ
0: तो शिल्पग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें कहीं
1: वाह।
0: देखा है। तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि ये इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया, और इतना अच्छा काम निकल के
1: और
0: आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफ़ी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुंचना है।
1: डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख
1: अरे
0: लिया कि
1: क्या
0: अभी
1: बात
0: है
1: है।
0: मुझे पहुंचना है NSD। तो फिर वहाँ
1: अभी
0: से
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी
1: यहां एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी हाँ
1: तो
0: जी
1: जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहां बजाया जाए।
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम, वो
1: गोविंदा
0: गाना
1: की
0: गाने
1: फिल्म।
0: सुनता, तू पागल प्रेमी आवारा, दिल
1: हाँ
0: तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना,
1: हाँ
0: ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
1: क्या बात
0: ओए।
1: है।
0: तो ये कुछ गाने हैं जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल, वो एक जहन में बसे
0: बहुत
1: होते
0: ही
1: हैं और ये उस दौर की याद लेके
0: जी
1: आते
0: जी
1: हैं।
0: जी हमने
1: बातचीत
0: बहुत देखा है
1: करेंगे।
0: फिल्म को,
1: वाह।
0: बहुत देखा है फिल्म को हम, मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: हाँ,
0: गुंडा,
1: क्या
0: जो
1: बात
0: भी
1: है।
0: CD पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह, ये
0: हाँ
1: गाना सुनते
0: जी।
1: हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं,
1: जी
0: और
1: जी
0: ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में, और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका
1: मुलाकात
0: परिचय
1: हुई है।
0: होता है, जो
1: जी
0: तब तक NSD में हैं
1: जी
0: और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए,
1: दिखाई दे।
0: और वो एक शिविर लगाते हैं,
1: जी
0: और वहां से आपको एक राह दिखती है,
1: जी जी
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है
1: जी
0: और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा, जिसका परिचय नहीं है, उसका परिचय इन सब चीजों से होता है, और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुँच रहे हैं।
0: उसके आगे क्या होता है।
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुँचता हूँ, तो अब मुझे तो कोई कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहाँ पे जाऊँगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए, कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहाँ मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले गए।
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिताजी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया, और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th 10th क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहाँ पहुँचा। उस समय मेट्रो बन रही थी, और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुँचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था, मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा, और मैं NSD मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा, और वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया। तो मैं गेट में घुसने को हुआ, तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी,
0: अरे
1: रिटायर्ड
0: बाप रे
1: फौजी थे वो।
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्हें बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है, बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कह रही अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्हें बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊँगा, मैंने बोला कि मैं आऊँगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
0: हाँ वो छोटा
1: छोटे
0: वाला।
1: वाला फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो
0: हाँ
1: मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है, बस
0: रिकॉर्ड कर
1: इसमें
0: दो।
1: रिकॉर्ड कर दो, 1 मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो या बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए, जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है, और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं,
0: अरे
1: तो
0: गजब।
1: तुम
0: तो
1: अनुशासित
0: उसने
1: हो,
0: 1 मिनट में सब बोल
1: सब
0: दिया।
1: बता दिया, ये करके आना पड़ेगा, तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है, मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो
1: तो मैंने
0: कॉलेज
1: कॉलेज
0: इस
1: में,
0: शहर

0: में था?
1: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहाँ पे मैंने ये ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको। तो उनसे जुड़ गया, फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए। बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर सत्यनारायण का नाटक किया,
0: बिल्कुल
1: और भी नाटक जो भी वो कराते थे उसमें उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
0: अच्छा
1: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा। अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो? आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर या आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
0: बिल्कुल
1: आप जानते होंगे, बहुत बढ़िया कवि हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल विहान
1: तो
0: ग्रुप।
1: हम विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको फ़ोन करता था, वो मैं पागल कर देता, भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज़ मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर हैं अलख नंदन सिन्हा जी, मैं
0: गजब।
1: अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को। शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूँ और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ, और मैं वैसे ही जा रहा हूँ, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है। मैं सोचूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका है उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा, और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फ़ोन कर रहा हूँ। अभी 5 बजे कोई कोई फ़ोन उठाएगा?
0: बिल्कुल
1: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने बोला 12 बजे तक मैं क्या करूँगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन बंद हो जाए या आपका फ़ोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा,
0: रोशनपुरा चौराहे पर।
1: हाँ एक एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा। और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, और मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने उनके पैर छूए, वो नहीं बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया, और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं, और 1 घंटा हो गया।
0: पहले हेमंत आया।
1: हेमंत दादा आए पहले, और उन्होंने
0: अच्छा
1: बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदेले हो, तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले,
0: हाँ
1: और तुमने बोला तुम गाने आना गाते हो तो हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख लें। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहनी हुई है, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं,
0: अरे
1: बड़े बड़े
0: बाप
1: मैंने
0: रे।
1: बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर ही रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। वैसे
0: अरे
1: मैं
0: बाप रे।
1: बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये मुझे ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे
0: ज्यादा
1: चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उनने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं हैं, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल से साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीज़ें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना। और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया, एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ, तो उनने बोला कि अच्छा अच्छा तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
0: जरूर।
1: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने। ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, वो पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने। घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बाड़ो लिबवाने,
0: वाह वाह
1: मोखा अपने मौसिया से गुब्बाड़ो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
0: क्या बात है।
1: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं।
0: बिल्कुल।
1: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
0: वाह वाह
1: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
0: वाह वाह।
1: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया ले बुआई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
0: कहते हैं देवेंद्र
1: के बचपन उस समय ये बुंदेलखंडी कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी, और वहाँ से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
0: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
1: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली, और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था, खर्च कुछ था ही नहीं,
0: बस वहां खाना हो गया,
1: खाना हो गया, और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल फिर साफ करना है, चढ़ाइयाँ बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में मैं, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना, और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था कि भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत ख़राब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत ख़राब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला, मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, यार ये मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे वो भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, और ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्ज़ाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में चल का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है, मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की है और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात
0: किए,
1: है।
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, एक 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ, पक्का
1: सुनेंगे।
0: पक्का चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का गाना,
1: ओमकारा का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: का गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत
0: सुंदर
1: शानदार
0: गाना
1: गाना
0: है।
1: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र,
1: जी
0: आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ, तो
0: इसके आगे क्या हुआ?
1: मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेलवी गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहाँ पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चल पड़ा,
1: चालू हो गया। फिर उसके
0: क्या
1: बाद
0: बात
1: मैं
0: है।
1: पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना। तो
0: अच्छा,
1: एक ब्रिज मिल गया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है डेस्टिनेशन।
0: वो बोर्ड और
1: वो
0: वो
1: तो छूटे नहीं है,
0: धुरंधर
1: वो
0: जी याद आ
1: रिकॉर्डिंग तो
0: रहे।
1: छूटे नहीं है,
0: हाँ
1: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर
0: अच्छा।
1: एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया। और देने गया इंटरव्यू तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ। मैंने कहा अरे यार, तो फिर
0: ओके।
1: मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ। और तो
0: ओके,
1: उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम
0: लेकिन
1: किया,
0: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन हो
1: हो
0: गया
1: गया।
0: और वहीं वो
1: और वो
0: धुरंधर जी
1: धुरंधर जी
0: मिले
1: से मिलना हुआ मेरा,
0: मिले धुरंधर जी।
1: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी, पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक। मैंने
0: हाँ
1: बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, यार ऐसे वो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे। वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग
0: हाँ
1: कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहाँ पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे
0: बिल्कुल
1: दुनिया में होता है।
0: जी,
1: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब आप
0: हाँ,
1: वो
0: परिवार
1: प्यार
0: के एक
1: मिलता है, परिवार के
0: सदस्य।
1: सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप,
0: हाँ,
1: तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफ़ी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी हो, बहुत ही अच्छे थे वो।
0: एनएसजी ने आपकी दुनिया को कितना बदला।
1: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, मेरा
0: बस।
1: रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी,
0: अच्छा,
1: क्योंकि मेरे
0: लेकिन
1: को,
0: ये फिर भाषा पर काम कैसे किया, ये
1: हाँ
0: बहुत
1: मैं
0: महत्वपूर्ण
1: बता
0: है।
1: रहा हूँ कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था,
0: हाँ
1: तो लोग हंसते थे,
0: हाँ
1: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मेरा बहुत बड़ा मसला है।
0: हाँ
1: हाँ,
0: हाँ
1: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे
0: हाँ
1: लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके,
0: हाँ
1: मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा, मैं गलत बोलता था,
0: शक को सा बोल रहे हो।
1: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता, जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया,
0: हाँ
1: जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड बैंड है उसमें गाना है ना, जो इस
0: हाँ
1: पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, तो
0: हाँ
1: शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था, जिसमें मैंने
0: हाँ
1: सा को सही बोला था,
0: हाँ
1: शामिल बोला था। मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बुलवाना चाह रहे थे हम।
0: ओके
1: तो
0: ओके,
1: ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने बहुत बड़ा रोल किया, लोअर डेप नाटक में दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया, और डायरेक्ट कर रहे थे अनुज खुटवत सर, और मैंने, मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया, और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे है, और लगातार बोलना है,
0: वाह
1: और
0: वाह
1: कैरेक्टर
0: वाह।
1: बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी चीज़ जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनरिज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ आया कि यार मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियाँ कौन कहेगा, तो फिर मैंने वहाँ से अपना रुझान बदला और मैंने डिज़ाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया, सेकेंड ईयर से आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया। और फिर मैंने अपनी कहानियाँ लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस ज़मीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी के पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ। लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
0: बिल्कुल।
1: तुम्हारी एफर्टलेस का मैं दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
0: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है?
1: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे, बंसी कॉल जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
0: मुखौटा।
1: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लार्ज एंड लाइव थिएटर करते थे और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफ़ी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज़्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
0: तो वहाँ से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
1: मैं पास आउट हुआ 17 में और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था डीरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया और वो थिएटर ओलंपिक हुआ उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था उसके 1000 लोग देखते थे और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिज़ाइन किया था। और MP छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहाँ से एक रेल की पटरी निकलती है और वहाँ पे एक गार्ड रहता है और वहाँ पे एक फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए और मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफ़ी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था वो डायरेक्टर का और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था 12 बजे के आसपास, NSD से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, सर सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुँच रहे हैं, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे। मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊँगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ।

0: पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया।
1: और यहां से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ, मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है। पर ये बताता कि वहाँ हर हाल में पहुँचना है, जहाँ जाने का ख्वाब देखा है तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे। फिर मैंने एक नाटक बना लिया, कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे। वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हाँ, वो क्योंकि रेडियो का बंदा था तो रेडियो पे कोई न्यूज़ चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूज़िक है। तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया। हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है। और
1: उसका एक गाना सुनाओ यार।
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
1: बिल्कुल।
0: सुनाता हूँ मैं आपको उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है। मैं एक इसकी छोटी सी गंभीर बात आ देता हूँ कि
1: बिल्कुल।
0: एक छोटा सा सेंटेंस, जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है, और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये, एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के रख
1: बदल
0: दी,
1: दी।
0: बदल दी। उस पर एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, एक संवाद कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद
1: तो
0: है,
1: वो क्या कर
0: तो वो
1: सकता है।
0: क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है, क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहाँ कहाँ पहुँचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या
0: पै
1: बात
0: पै
1: है।
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इनलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से, जोर से, जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी,
1: वाह।
0: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से, जोर से, जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या
0: ऐसे
1: बात
0: बोलता था।
1: है,
0: ये
1: क्या
0: टाइटल
1: बात
0: सॉन्ग
1: है,
0: है।
1: बढ़िया गाना है।
0: जी।
1: कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का।
0: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें अभी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कोम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो हैं, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, NMACC में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब
0: जी
1: सीरीज
0: जी
1: में।
0: स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी। जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, हाँ। और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा। अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो। अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है। बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की। क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा। मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरुजी रोविंद सर काम, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग उसमें थे। तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था। गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था। अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है। आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कहीं तो फूंक में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या सुन
0: उसके लिरिक्स ऐसे हैं मतलब,
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए।
0: जी जी जी।
1: तो फिर कभी मिलेंगे और आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था, आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार।
1: बिल्कुल।
0: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत, इतना नहीं एक रेडियो में।
1: बिल्कुल।
0: और मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको, और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहाँ से कहूँ जैसे गाने मैंने सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूज़िक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूँ तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके साथ बैठा हुआ था।
1: सफर है।
0: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंद दादा ने दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली से। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे आज अमेरिका से कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मशीनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ

0: काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का अथक प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन की कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम भजन संध्या। शाम 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युव मंच। शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। शाम 6:30 पर किसान व बागवान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत और शाम 7:25 पर समय रहेगा कार्यक्रम रौनका ग्राइंदियां। शाम 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या, रात्रि 9:00 न्यूज एट 9 और रात्रि 11:00 हिंदी समाचार। रंगे गजल ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00 और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:07 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। भजन संध्या कार्यक्रम च तुहां सारिआं दा स्वागत है। अज दे इस कार्यक्रम च मैं हूँ नरेश चंदेल। चला कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जोगिंदर बल्ला कने साथियों के स्वरा च माता राणी की भेंट ते।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवमंच

में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं नरेश चंदेल। युवा साथियों, आज हम बात करेंगे उस साहसी बेटी की जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया। जी हां, हम बात करेंगे बछेंद्री पाल की। जीवन में ऊंचाइयां उन्हीं को मिलती है जो कठिन रास्तों से डरते नहीं। बछेंद्री पाल इसी साहस और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण है। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को नागपुरी गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही उन्हें पहाड़ों और रोमांच से विशेष लगाव था। युवा साथियों, जहां कई लोग कठिनाइयों को देखकर पीछे हट जाते हैं, वहीं बछेंद्री पाल चुनौतियों को अवसर में मानती थी। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पर्वतारोहण के क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके प्रशिक्षकों ने जल्दी ही पहचान लिया था उनमें असाधारण क्षमता और साहस को। वर्ष 1984 में भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। इसी वर्ष बछेंद्री पाल भारतीय एवरेस्ट अभियान दल का हिस्सा बनी। अभियान के दौरान खराब मौसम, बर्फीले तूफान और कठिन परिस्थितियों ने कई बार रास्ता रोका, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वही ऐतिहासिक क्षण आया। 23 मई यानी आज के दिन 1984 को बछेंद्री पाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। वे एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यह केवल उनके व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था। एवरेस्ट विजय के बाद भी उनका सफर नहीं रुका। उन्होंने अनेक साहसिक अभियानों का नेतृत्व किया और युवाओं, विशेषकर बेटियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मान दिए गए। बछेंद्री पाल का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि संकल्प मजबूत हो तो हर ऊंचाई को छुआ जा सकता है।

जी हाँ युवा साथियों, अगर पर्वतारोहण में भी आप करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तस्वीरें देखते हैं, किसी पर्वतारोही की सफलता की कहानी सुनते हैं तो मन में एक सवाल आता है, क्या पर्वतारोहण केवल शौक है या इसमें भी करियर बनाया जा सकता है? और इसका उत्तर है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। पर्वतारोहण यानी पहाड़ों पर चढ़ने की कला और विज्ञान। युवा साथियों, ये केवल शारीरिक शक्ति का नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता, धैर्य, निर्णय क्षमता और टीम भावना का भी खेल है। अगर आप पर्वतारोहण में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देना जरूरी है। नियमित व्यायाम, दौड़, योग और सहन शक्ति बढ़ाने वाले अभ्यास बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि पर्वतारोहण में कठिन मौसम, लंबी यात्राएं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। युवा साथियों, इसके बाद जरूरी है प्रशिक्षण, और हमारे देश में कई प्रतिष्ठित संस्थान पर्वतारोहण के कोर्स करवाते हैं। यहाँ पर बेसिक, एडवांस और विशेष प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इन प्रशिक्षणों में रस्सियों का उपयोग, बर्फ पर चलना, बचाव तकनीक, कैंपिंग और ऊंचाई पर रहने के तरीके सिखाए जाते हैं, और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आप कई क्षेत्रों में अवसर तलाश कर सकते हैं, जैसे पेशेवर पर्वतारोही बन गए, ट्रैकिंग गाइड बनकर, एडवेंचर टूरिज्म विशेषज्ञ बनकर, आउटडोर प्रशिक्षक बनकर, खोज और बचाव दल का नेतृत्व कर, पर्यटन एवं खेल क्षेत्र में प्रशिक्षक बनकर भी आप अपने करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। और युवा साथियों, आज एडवेंचर टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। साथ ही साथ पर्वतारोहण में सफलता के लिए अनुभव भी महत्वपूर्ण है। छोटे ट्रैक से शुरुआत करें।

स्थानीय पर्वतीय अभियानों में भाग लें और धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ें। युवा साथियों, पर्वतारोहण हमें केवल शिखर तक पहुंचना नहीं सिखाता, बल्कि हर कठिनाई के सामने डटे रहना भी सिखाता है। अगर आपके अंदर साहस है, चुनौतियों को स्वीकार करने का जज्बा है और प्रकृति से प्रेम है, तो यह क्षेत्र आपके लिए सुनहरा अवसर बन सकता है।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों, आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवमंच। युवा साथियों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे शांत, धैर्यवान और प्रकृति अनमोल जीव की जो लाखों वर्षों से धरती पर अपना अस्तित्व बनाए हुए है। जी हाँ, वो है कछुआ। हर वर्ष आज के दिन यानी 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य लोगों को कछुओं और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, कछुआ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्राचीन जीवों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कछुओं का अस्तित्व करोड़ों वर्षों से बना हुआ है। इनकी सबसे बड़ी पहचान इनका मजबूत कवच होता है जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। कछुए धरती, समुद्र और मीठे पानी तीनों प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। विश्व कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि कछुए केवल एक जीव नहीं बल्कि पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समुद्री कछुए समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में योगदान देते हैं, जबकि अन्य कछुए जल स्रोतों और जैव विविधता को संतुलित रखने में सहायता करते हैं। लेकिन युवा साथियों, दुख की बात यह है कि आज कछुओं का अस्तित्व कई चुनौतियों से घिरा हुआ है, जैसे बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, अवैध शिकार, जंगलों और जल स्रोतों का नष्ट होना तथा जलवायु परिवर्तन इनके जीवन के लिए खतरा बन चुका है। विशेष रूप से समुद्री कछुए प्लास्टिक को भोजन समझकर निकल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। यदि हम सच में प्रकृति से प्रेम करते हैं तो हमें छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। नदियों और समुद्र तटों को स्वच्छ रखना होगा, प्लास्टिक का कम उपयोग करना होगा, वन्य जीव संरक्षण के नियमों का पालन करना और बच्चों में प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना हम सबका उत्तरदायित्व है। कछुआ हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। दोस्तों, धीरे चलिए लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहिए। उसकी शांत गति हमें धैर्य, संतुलन और निरंतर प्रयास का महत्व सिखाती है। तो इस विश्व कछुआ दिवस पर हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रकृति के इस अद्भुत जीव की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए जैव विविधता को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
4: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
3: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
4: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: दोस्तों, आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युव मंच, और अब हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने विज्ञान, राजनीति, लेखन और समाज सेवा हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की, उनके एक महत्वपूर्ण आविष्कार बायोफोकल चश्मे के बारे में। जब भी हम चश्मे की बात करते हैं तो सामान्यतः ये मानते हैं कि यह केवल देखने में सहायता करने वाला साधन है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा था जब लोगों को पास और दूर देखने के लिए अलग अलग चश्मे रखने पड़ते थे, और इसी समस्या का समाधान लेकर आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। दोस्तों, उनका जन्म 17 जनवरी 1706 को हुआ था। वे केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि लेखक, राजनयिक और आविष्कारक भी थे। उन्होंने बिजली से जुड़े प्रयोगों के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन उनके कई उपयोगी आविष्कारों में से एक था बायोफोकल चश्मा। कहा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ फ्रैंकलिन को भी देखने में परेशानी होने लगी थी, और उन्हें दूर की वस्तुएं देखने के लिए अलग चश्मा और पढ़ने के लिए अलग चश्मा उपयोग करना पड़ता था। बार बार चश्मा बदलना उनके लिए असुविधाजनक था। तब उन्होंने सोचा क्यों ना दोनों प्रकार के लेंस को एक ही फ्रेम में जोड़ दिया जाए, और 1784 के आसपास उन्होंने इस तरह के चश्मे का विकास किया, और अंतिम भाग में इसका आविष्कार माना जाता है। और बायोफोकल का मतलब ये होता है कि दो फोकस वाले लेंस, और इसमें चश्मे का ऊपरी हिस्सा दूर देखने के लिए और निचला हिस्सा पास की चीज़ें पढ़ने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के आविष्कार ने लोगों के जीवन को काफ़ी आसान बना दिया, और उन्हें अलग अलग चश्मे साथ रखने की आवश्यकता नहीं रही, और आगे चल के आधुनिक मल्टीफोकल और प्रोग्रेसिव लेंस विकसित हुए। तो दोस्तों, इन्हीं जानकारियों के साथ अब आज का युव मंच कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की नरेश चंदेल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। आकाशवाणी शिमला से अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कहा कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी से इस चुनौती का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जहां अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कस रही है, वहीं नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के चिट्टा मुक्त अभियान के साथ अभी तक राज्य में 2,34,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। ये लोग सरकार की आंख व कान बनकर नशे के कारोबार करने वाले की सूचना पुलिस तक पहुंचा रही है। इससे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चिट्टे का सेवन करने वालों और नशा तस्करों की पहचान सुनिश्चित बनाई है। प्रदेश भाजपा मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार के जन विरोधी फैसलों के कारण हिमाचल देश का सबसे महंगा राज्य बन गया है। कर्ण नंदा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वायदे पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब पहले से मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली को बंद कर दिया गया है। यही नहीं, बिजली के दाम लगभग 5.5 रुपये प्रति यूनिट वसूले जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की।
1: कांग्रेस सरकार अपने जन विरोधी निर्णय लेने में पीछे नहीं है और एक के बाद एक प्रदेश में बिजली बिलों के झटके यह कांग्रेस सरकार आम जनता को दे रही है। सरकार जब सत्ता में आई, प्रदेश में यह लोग 300 यूनिट बिजली देने की बात की थी और वो भी मुफ्त की। हिमाचल प्रदेश में मुफ्त बिजली तो गॉन, पर एक यूनिट बिजली भी अगर किसी की चलती है तो उस पर भी पैसा देना पड़ेगा। अगर 0 से 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त मिल रही थी, अब उसके ऊपर 5.44 रुपए वो प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आ रहा है।
0: कर्ण नंदा ने प्रदेश सरकार पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में कई लोक लुभावन निर्णय लेकर पंचायत चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस संबंध में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के 26 मई को होने वाले पहले चरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां कल 24 मई को अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। इन सभी पोलिंग पार्टियों को आज राज्य में अलग अलग स्थानों पर तीसरे व अंतिम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। सिरमौर जिला मुख्यालय

0: में खंड विकास अधिकारी अंजलि गर्ग ने कहा कि इस ब्लॉक में पहले चरण में 10 पंचायतों में चुनाव होगा।
1: ब्लॉक नाहन में आज हमारी तीसरी रिहर्सल करवाई गई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की और पोलिंग ऑफिसर्स की। तो इसमें लगभग हमारी 73 टीम्स की हमने आज ट्रेनिंग करवाई, तो कल में उनको रवाना कर देंगे अपने अपने स्थानों के लिए।
0: प्रदेश में 3 चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल की भी पर्याप्त तैनाती की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिनों में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि की गई है। ये वृद्धि ईरान संघर्ष और हॉर्मुज में व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। इस बीच पेट्रोल व डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि बढ़ती कीमतों ने उनका बजट बिगाड़ दिया है।
2: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो आम जनता के लिए तो बहुत मुश्किल की बात है, कहाँ से अपने पैसे पूरे करेंगे। तो मेरी विनती है कि पेट्रोल के दाम ना बढ़ाएं, इसको कम करें।
3: अब मैं एक टेम्पो चलाता हूँ, टेम्पो में डीजल डलता है तो डीजल कम से कम 5 रुपया बढ़ गया है पर लीटर, तो इसमें मैं क्या कमाऊंगा। तो यही है कि डीजल थोड़ा कम हो।
0: प्रदेशवासियों को एक बार फिर जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 26 व 27 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर सहित राज्य के 6 जिलों के अलग अलग स्थानों पर हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार 25 मई तक राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। विभाग ने इस दौरान प्रदेश के शिमला सहित मध्यम व ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना भी जताई है। इस बीच बीते रोज राज्य के अधिकांश स्थानों पर हुई वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी से प्रदेश देशवासियों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत मिली है। आज भी राज्य के अनेक हिस्सों में दोपहर बाद से हल्के बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। सफर सुहाने, गाने नए पुराने सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तीन देवियां फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और संगीत है SD बर्मन का।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: दोस्तों, आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। आइए अब सुनते हैं सुलक्षणा पंडित और अनवर की आवाजों में थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गीत है, रचना गुलजार की है और संगीत है खय्याम का।

दोस्तों, अब सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना को आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में। आवाज है मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम तीसरी मंजिल।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का यह गीत था। रचना स्वानंद किरकिरे की थी और संगीत था शांतनु मोइत्रा का। दोस्तों, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। परिचय फिल्म का ये गीत है, रचना गुलजार की, संगीत आर डी बर्मन का।

0: ए बिच्छू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
0: ऐसे नहीं, बोलो मेरे।

दोस्तों, इसी गीत के साथ अब आज का कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने यहीं पर संपन्न हो रहा है। अब नरेश चंदेल को दीजिए इजाजत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM एंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे ही किसान कने बागवान भाई भैन जो मेरा यानी गुलाबो दा कने मेरे ने सौगी
1: सिमरो दा प्यार भरा नमस्कार राम राम।
0: सिमरो अहा उम्मीद करदे पे हंदे सारे ही किसान कने बागवान भाई भैन जी से बिल्कुल ठीक होने तंदुरुस्त होने कने भाई खेती बाड़ी दे कम च जी ऐसे व्यस्त होने।
1: हाँ पर दे है ना कि गर्मी जी ऐसे अपने पूरे जोरां पर है, तो इस दौरान अपना भी खास ख्याल रखना कने ताई जी अगर सेहत ठीक होंगी ना तो अहा दे खेती बाड़ी दे काम जी से सही ढंग ने हो ही पाने।
0: जी बिल्कुल, अजकल दिखा संझा पे आ गई जी ऐसे अहा खेतर दे काम करी सकते भी हैं। पहले कह हंदे सियाने हिस्से सुनांदे पे अहे पूरा पूरा दिन जी ऐसे खेतर च कम्मा लगी रहंदे हे पई, लोड़ देने तो पूरा दिन धुप्पे पर लगी रहना खेतरे पे ही कने हूँ जी आ टाइम जाने का नहीं है खेतर जो धुप्पे पर है ना।
1: हाँ तो दे है ना गुलाबो भैन पे पहल का टाइम भी कुछ हो रहा, पहल के खान पान जी ऐसा भी एक अलग तरीके दे है ना, हर चीज करे दी उगाई हुई जी ऐसा खांदे हैं यहाँ तो हाँ कने सेहती भी खरी रहनी ही हैं।
0: जी
1: पर
0: जी
1: उन जी जी जी टाइम बदला था तीस अनुसार अहाँ जो भी बदलना पौधा।
0: हाँ कने पहले मौसम बनी होंगे देड़े देड़े ये जो जलवायु परिवर्तन हुआ था ना उन तो तापमान भी दिखा आजकल कितना ज्यादा बढ़ी गया भी है।
1: हाँ सही तो मैं दिखा दी हूँ पे अधिकतम जी ऐसे आज 35 डिग्री सेल्सियस कने न्यूनतम जी ऐसा है 19 डिग्री सेल्सियस।
0: हाँ तो दिखा दिहाड़ी दे टाइम हों पे तीया ते उपर नहीं चढ़ता हा तापमान है ना, तो चलो खेतरां दे काम कार हो जाते हूँ तो संझ के टाइम जी ऐसे 40-40 तक तापमान जी ऐसे पूजी आता भी इतने धुप्पे पर अगर अहाँ काम करी भी लेंगे तो अगले दिन जी ऐसे पाई बिस्तरे वाले काम हो जाना फिर है ना।
1: हाँ सही क्योंकि मौसम का दिख पता नहीं लगा पे ताली जी गर्मियों का मौसम होना चाहिए ताली जी ऐसे बरसाती शुरू हो जा रही बरसाती दे टाइम ठंडू तो मतलब सारा जी ऐसे बदलाव बड़ा ज्यादा हो चुके
0: हाँ
1: हैं।
0: क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो आता भी है कने इतने जे अहाँ ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है तीन फ्रिज हो गए भी हैं फिर एसी हो गए भी हैं ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन छड़ देते इसकी वजह से जी ओजोन परत इसकी छेद हो आता था ये जलवायु परिवर्तन जैसे हौले हौले वो याद भी आया कने इं भी दिखा तुहे अजकल भी कपड़े पा दे सुकना बाहर है ना जे घड़ी भर नहीं चक्का दे बाहर कपड़े तो समझो जो इन्हें रंगा दे पता नहीं लगता कदिया रंग था कपड़े
1: तो
0: का।
1: सही है ना पे जेडी जी सूर्य की रोशनी है इतनी ज्यादा तेज कने इतनी तेज किरणा पौ रही है पे तिस्ते बड़ा ज्यादा प्रभाव जी से ओ आदा।
0: हाँ तो गल ये पे धुप्पा पर जे आस अहा चाहे खेती बाड़ी दे काम होन चाहे कोई भी बारले काम होन तिना जो अगर अहा नहीं करन तो ठीक है क्योंकि दिखा नौकरी पेशे वाले तो जाने ही है ड्यूटी वाले भी जाने ही है बच्चे भी स्कूलों जा रहे हैं पर अपना जे आस ध्यान रखना भी है पे खेती बाड़ी दे काम चाहे पशुओं के संजा प्यागा जी ऐसे
1: करी
0: निपटाए
1: लैन
0: लेने भी हैं है ना। कने दिखा और भी सिमरो गर्मियों च कई किस्म दी समस्याएं जे ऐसे हो जांदियां भी हैं।
1: गर्मी च दिखा हाँ जेड़ा जी अनाज गेहूं चावल दाली इन्हें च भी कई तरह के कीड़े जी ऐसे लगी आंदे तो इन्हें जो भी बचाना बड़ा जरूरी है क्योंकि
0: हाँ
1: उन्हें जो जी ऐसे नमी कने धुप्पते जी ऐसे बचाना चाहिए।
0: बिल्कुल, अहाँ कई बार क्या सोचते भी आनती हैं पे चौल या आनती ना चसीड़ियाँ पे यही भी आने या पट्ठड़ियाँ लगी हैं क्योंकि ज़्यादा गर्मी जो होंगी इस दिया वजह से अनाज

0: पर कुछ अनाज देड़े होंगे तिना जो ज्यादा धुप्पा की जरूरत नहीं होंगी
1: हाँ,
0: है
1: हूँ
0: ना।
1: जी छलियाँ कने कणक की गल करी तो तिना च अगर कोई कीड़ू लगी भी जाता तो हाँ एकदम धुप्पा जी से सुकाई सकते तिना जो।
0: आओ कहती है जे अगर अनाज अहाँ सुखवाए ले दा तो जो अहाँ डब्बे जे असें बंद करने रखी सकते भी हैं, पर डब्बे च भी अगर अहाँ बंद करने रखना तो तिस चीतियाँ निम्मा दियाँ सुखिया पत्तियां पाए लिया, तेज पत्ता पाए लिया, लौंग पाए लिया या लसणा दियाँ कलियां पाए लिया भी हैं, तो तिसते भी क्या होंगे भाई कीड़ा जे असें घट लगता भी आ।
1: हाँ, क्योंकि इन्हों की जी गंध ऐसा एकदम तेज होंगी तिखी होंगी तो इसते कीड़ा जी ऐसा नहीं इन्हों के नेड़े आता। अनाजों जो डिब्बे च भरने से पहले घट्ट घट्ट 2 से 3 दिन जी ऐसे हाँ जो तेज धुप्पा बिच अच्छे तरीके ने सुखाई लेना चाहिए। इससे होंगे क्या भी जी जी नमी है सह खत्म हो जाती, कने कीड़े कने फंगस पैदा होने की जी वजह रही ना सह खत्म हो जाती।
0: बिल्कुल करती हैं जी हाँ दस्या पे एयर टाइट डब्बे च जी आसे अनाज बंद करने रखना भी है, क्योंकि तिस्ची फिरी नमी जी आसे अनाज च नहीं आंदी भी, कने अनाज जी आसे हमेशा तिया जी हाँ डिब्बे रखते हैं तिना च रखना है मिट्टिया दी होने तो बड़े ही अच्छी गल ही, या फिर स्टीले डब्बे का अहाँ इस्तेमाल जी आसे करी सकते भी हैं, कने
1: हाँ
0: अगर बड़े ही ज्यादा अनाज कई बार तो दिखाती है जो हूँ कणक ही होई दी भी तो पेड़ू च पाए लेंदे टंकिया च पाने अहाँ रखी लेंदे भी हैं, कने अगर फिर भी जगह नहीं हो तो कई बार अहाँ क्या करते पे सेबे बोरिया दी तिस्ची भरने जी ऐसे अनाज जो रखिंदे भी हैं, तो तिस्ची क्या होंगे पे नमी का डर जी ऐसे ज्यादा होंगे
1: ज्यादा
0: भी
1: हो
0: है
1: जाता। इं भी दिखा अगर हाँ अपने प्रयोग वास्ते उगा देता तो चलो है प्रयोग हो जाता,
0: जी
1: पर
0: जी
1: कई बार यहाँ ज्यादा जो बेचनी है कणक छलियाँ तो ज्यादा स्तर पर खेतीबाड़ी जी से कर दे तो इस तरीके ने कि यहाँ तेना जो बचाई के रखना ये दे मौसम भी से ज्यादा जरूरी हो जाता।
0: हाँ तीन जो बोरियां ची यहाँ पर ने कोई अनाज रखा दे तो है बिल्कुल साइया धरती पर नहीं रखी देना, कोई अहाँ सेल्फ जे बनाए सकते भी हैं, अगर अहाँ ज्यादा पहुँच नहीं तो अहाँ बेंजा दिए नाल इंदी जे है बनाते पहल के सियाने भी बनाते हैं है ना,
1: और
0: है सेल्फा दे बनाए सकते, फिर तिस पर गास जे ऐसे अनाज जो रखी सकते भी हैं, कोई फट्टा रखी लिया थल पटड़ू वगैरह उच्चा जे रखी लिया या
1: और
0: नहीं।
1: जी चौकी
0: हाँ
1: टाइप बनाए ने तीस पर
0: और
1: अहा रखी सकते, तीस ते क्यों होना जी जी बरसाती पानी की सीलन नहीं आंदी, कने अजकल भी जी नमी वगैरह से नहीं होंदी ज्यादा।
0: जी बिल्कुल अहाँ सोचते पे सेजल जे इसे बरसाती आंदी, पर कई जगह तीन जे कंगर वगैरह है तो बड़ी भारी ज्यादा गर्मी जी होंदी तो है मुटना जे ऐसे शुरू हो
1: शुरू हो
0: जाते भी हैं,
1: जाते।
0: तो तिस दिया वजह से भी जे ऐसे एकदम नमी जे इसे आई आंदी, क्योंकि पहली गल अहाँ अनाजा जो जे ऐसे नेरे कमरे च रखना पसंद करते पहल के सियाने तो उबर के रखते है ना, पर
1: हाँ
0: हूँ भी अगर पक्के मकान भी अहाँ बनाए देते एक स्टोर रूम जे ऐसे अहाँ अलग ही बनाए दा होंगे तो साइडा घट ही जाते फिर यहाँ आवाजाही घट होंगी भी,
1: आहो
0: तो टाइम टाइम पर जी ये चीज़ा जो चेक करना चाहिए अगर गर्मियों च भी पानी जी ऐसे कुड़िया दा आई आदा तो अनाज जी ऐसे बचाए लेना चाहिए।
1: जी अगर अहाँ अपने घरेलू नुस्खे अपनाते हैं तो भी अहाँ अनाजों जो बचाई सकते,
0: हाँ
1: क्योंकि इस बीच केमिकल अगर अहाँ पाएंगे तो भी अहाँ वास्ते इसका नुकसान होना। तो इस तरह क्या करना भी जी गेहूं या चावल के डिब्बे च सूखिया नीमा दी पत्तियां रखने ते जी ऐसे कीड़े दूर हो जाते।
0: जी
1: कने चौल कने दालें जी होंगे ना तिना बीच अहाँ 4 से 5 लौंग या 2-3 तेज पत्ता पाई के जी ऐसे रखी सकते, इससे भी कीड़े जी ऐसे नहीं लगते।
0: बिल्कुल कहती हैं लसणा दियाँ कलियाँ जे अहाँ पानिया होना अनाजा ची तो कुछ कलियाँ जे ऐसे अहाँ लसणा दियाँ लैनियाँ फिर तीनों जो दाएँ करने जे ऐसे छिली लेना कने पतले जे कपड़े ची से बन्नी लैनियाँ फिर अनाजा दे पेड़ जे ऐसे अहाँ पाई देनियाँ भी, क्योंकि इसकी गंध भी बड़ी तेज होंगी भी तो इसते भी कीड़े नहीं लगते भी हैं, कने अगर ईंग भी अहाँ रख दिन सुक्का ईंग ना तो
1: हाँ
0: तिसते भी जे ऐसे कीड़े फसल जो नहीं लगते भी हैं।
1: हाँ कहने देखो पहल के सियाने क्या करते हैं गुलाबो भैन पे दिख ना क्या करना घर जी जी माच सही डब्बी होंगी है ना सह या तूलियां लेके जी ऐसे अनाज बिच रखी देनी है
0: जी
1: तो तिसते भी एड़े जी कीड़े जी ऐसे नहीं लगते।
0: हाँ क्योंकि मार्चिस जी होंगी तिस पर भी है मसाले की जड़ी गंध होंगी ना है बड़ी तेज होंगी भी, पर मार्चिस जी इसे बंद नहीं रखनी
1: हाँ
0: खोलनी से अद्धी जी फिर ही जे ऐसे अनाज च रखनी थी जे मन्ने पे यहाँ चौल पाने कुसी डब्बे ची तो पहले 2-3 डब्बियां जे इसे तय पर रख देनी सारे ते थले तिस उपर जे ऐसे चौल पाए देने फिर गब्बे जी होर रखनी है 1-2 डब्बियां फिर उपरा ते चौल पाने कने लास्ट जे 1-2 डब्बियां जैसे फिरी रखी देनी है भी हैं देड़ा हम सोचन भाई 21 मार्च ये डब्बिया ने हो जाना काम तो तियाँ नहीं होना भी आ, तो ये सारिया चीज़ा जो इसे ध्यान रख गए तो अहाँ अनाजों जो जे ऐसे कीड़े ते बचाई
1: बचाई
0: सकते भी
1: सकते।
0: हैं, कने दिखा अजकल ता सिमरो है टाइम रही देनी है पहले तो देखो क्वांटला के हिसाब अनाज होंगे थे है ना,
1: और
0: हूँ या तो मौसम की मार हो जाती भी या कई तरह समस्याएं जो इसे आ जा भी हैं बेथाई बरखा ही कई बार हो जाती भी, तो मौसम का जो है कोई पता नहीं लगता तीन जो कल पे आ गए जी ऐसे तूफान पिया थोड़ा जहा कने बरखा हो ये भी थोड़ा जहा छिड़का।
1: हाँ सही भी कल ही जी कदम मौसम हो इसका नहीं पता है, कहने हूं तो दिखा भी मशीन नहीं उगे ना भाई जेडे जी अहां तुहां दे करने वाले काम है ना भाई खेतर।

0: या अनाज जो साफ करने देता है, बड़ी बड़ी मशीन ना इन्हों का काम जी सकारा दिया।
1: बिल्कुल
0: हाँ, पर फिर भी जेडे जी यहाँ दे पुराने नुस्खे से ज्यादा कुती न कुती जी ऐसे कामगार सिद्ध होंगे।
1: बिल्कुल। तो भाई ये तो अहाँ गलबात की भी गर्मियों के दिनों जोड़ा अहाँ अनाज भंडारित करने रखी हों ती जो कीड़िया तो जो असें कि बचा इस बारे हूँ कार्यक्रम से सुनना एक बांका जहा
0: लोक गीत
1: जी।

0: अभी किसान व बागवान भाई बहन सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली से। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारी नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस

0: का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को 27 मई तक केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं नरेंद्र चंचल, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज़ों में आशा फिल्म के।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रौनका गराएं दियां।

0: सिमरो।
1: हाँ गुलाब भैन,
0: मुई आई आई आई कने मिंगे चक्कर आई है धाइया तेल सट सिरा पर बुरा हाल है मेरा वो आज बड़ पर गर्मी मरी आना जड़ी बच दी गुलाब
1: ओ
0: वो
1: दिख चणका दी तक खरी है, मिंजे नहीं लगा पे चक्कर ने पे चल लियो।
0: मुई मजाक का मत कर दिया हूँ सच गला दी पानी लिया ठंडा ठंडा अंदर ते कने मैं मरना लगी दी है गर्मी ने बड़ी भारी गर्मी में
1: ओ मैं नहीं दिन दी मरना थी, जो ले पानी पी तू, ठंडा ठंडा पानी पी ना।
0: कड़दा
1: हाँ घड़े दा ही प्याना था, फ्रिजा दा थोड़ी प्याना भाई, एकदम गला पकड़ो याद फ्रिजा दे पानी ने भी।
0: ना तू फ्रिजा का पानी दिया प्यादी तू घड़े दे पानी पिया दे तुझी बर्फ पाए दे फ्रिजा ते लियाने थोड़ी देर
1: ना बिल्कुल नहीं पानी, इंया बोला दी पे चक्कर ने पे चल लियो। दिख फ्रिजा दा पानी जेड़ा जी बर्फ फाड़ होंदा ना, इंया तो है पीने दा बड़ा ठंडा होंदा, पर तसीर तो तिस दी गर्म ही होंदी ना।
0: आ ये तू बिल्कुल खरी गल गला दी पर मैं बड़ा बारी चक्कर आ कने मैं मेरिया तो अखी नहीं खुड़ा दियां वो ही बिकियां गर्मियां च मरी आना पई
1: ओ तो ये दिख कड़िए जी ऐसे पानी पीन दिया रहे ना, अखी तो ताई खुलनी है अगर अपना शरीर खरा होगा ता।
0: ये तो सच गलाया भी मैं ना कने आऊं भी गई दी थी वो उपर सड़क दे कंडे है रखी देनी है बेंच दे बैठने बूठने जो
1: हाँ
0: तिथि दे गया पंछियां जो मैं पानी रखी दा था पीने जो
1: अच्छा
0: फिर
1: चल खरा कित्या, मैं ये तो खरा काम कित्या, पंछियों जो क्या आंदे जांदे जो जेड़े राहगीर आ दे ना, तीना जो भी उठी दो त्रै घड़े यहाँ रखी आए है ना, पर पे चल दिख अगर मुकी आंदा है तो हाँ तुहा सबने दी जिम्मेवारी बन दी ना, पे दुबारी भरी के रखी आए।
0: ओ मैं सही दिखना थी गई थी
1: अच्छा
0: एक तद्दी ने खा दिया पात
1: हाँ
0: हाँ वो दिया छोत्या अजकला तो पाई गया रसोई आला पात भी किया खाना सिमरो पे इं कालजा बदलो था मेरा हूं।

0: भाई सिमरो ना, खाने पीने तो तू गला दी, पर भाई ये जे लू लगा दी ना, यह ना तंग हो ये दे। मैं पहले हंदे हिमाचल च नहीं हंदा दे, आ हूं तो इतने पूरा काम लगे होना।
1: तो ताई गलांदे भाई पे ज्यादा तो ज्यादा रुख लगा ना, जितने रुख बूटे लगांगे तितनी ताजी हवा भी आनी। कने ए दे जी ओ आदा ना हुन मौसम च बदलाव,
0: हाँ
1: तीस च भी थोड़ा फर्क होना।
0: कने मैं बोलिया पे बड़ा भारी ज्यादा पानी पिया, नींद रिहा लगो तो भी पानी जी ऐसे अद्धे अद्धे घंटे बाद पींदे रही आ, तिस्ते जी आस डिहाइड्रेशन नहीं होनी। बोलिया
1: हाँ तो ये बोले चक्कर आ तो ना नींबू पानी बनाया ये पी, ये लोटा बड़ा भरिया मैं ना, ये सारा खत्म करना है हुन थोड़ी देर च।
0: पी लेंगी रखी दे राजी रे राजी तिग्यो विदे ठंड रखे परमात्मा ना। कने नींबू पानी फिर बोलिया ओ आर एस पी लेना, नारियल पानी पी लेना, छा पी लेनी, फिर बिल्ला का शरबत हो गया, फिर कच्चे अंब दे चीजा जी आस अजकला खा बोले लू लगने ते बचना था।
1: अच्छा उड़ी ना चीजें दी रूह बोली पई, तो हूं आज तो नहीं है भाई ना, हूं जांगी बाजारा जो कने लियांगी सारिया चीजा, अगर बड़ी रूह बोला दी ता।
0: ओ मैं रू नहीं बोला दी, पर मैं तिग्यो दसा दी पे इन्हां चीजा का भी अंजो सेवन करना चाहिए गर्मिया ची।
1: हाँ तो सही गिरा दी पई, जांगी कने लियांगी, घरे रखिया हुई ने सारिया चीजा, तो
0: हाँ
1: दिख बच्चे स्याणे कुसी जो भी अगर एकदम दे कुछ हुंदा है तो तिना जो दे नहीं पताली कुछ हुंदा ताली देना, इयां भी अहां दे सकदे।
0: ना तू भी सोचना पे इयां गुलाबो आंदी ही तब वो सिमरो बांकी दे चाह बनाया अज पानिया रोआ
1: हाँ
0: दी है।
1: सही गला दी पाई, चाय छड़ी दिया ये हा कने दे आए ना, पे ज्यादा ते ज्यादा जी ऐसे हाँ पानी वाली चीजा जी अंत इन्हों का प्रयोग करना, एड़ी गर्मी च चाह कने कॉफी जी ऐसे हाँ नी पीनी।
0: हाँ भाई ये तो तू सच गला दी, कने बहुत धुप्पा ते बचना भी बड़ा जरूरी आ। धुप्पा पर अगर बाहर जा दे ना तो छतरू ले लेना बोबा, कने चादरू जी ऐसे सिरा पर दाएं करने ढक्की लेना ना, तो टोपी ला लेने भी। कने मैं तो सोचा दी ना पे एक बांका दे चश्मा भी ले लिया धुप्पा वाला, तो खरी गल ही
1: हाँ तो जो तो बहाना चाहिए इं भी कुछ नवा जे जलूस कढ़ने का।
0: ओ नाम ये बड़ी भारी धूप होआ दी भी। कने तू छत्रु को लेना जा, पहला गई दी थी ना भत्त खाना छत्रु को लेना, मैं ले भाई आसन होगा तो आसते रहन को की अपनी जान तो बचानी बोबा है।
1: हाँ खरा गला दी, मैं तो इं मजाक कित्या तीजो पाई, दिख छतरू भी लैना कर चश्मा भी लाना।
0: सुन तो है ही एक तो सुनती नहीं सिमरो,
1: हाँ सुना सुना,
0: फिर क्या होया दिख मैं छत्रु कुछ दे तामस बजो ना पे और ज्यादा उसड़ लगो। कने मैं धुप्पे आखी फकोई गई
1: हाँ तो हूं निकलना नहीं भाई, टाइम टाइम दे देख, धुप्पा भी जरूरी है ना, ऊन जी निकला दे ता फिर दे छो दा। हाँ जो
0: धुप्पा तो भाई बड़ा भारी है गोल गया हाय छुआ दा। कने मैं तो सोचा पे अज गुलाबो जो जग पई आना पक्के मुल्ला, कने पता नहीं कुती फरलो आना पे।
1: ना, पर खरी पूजीगी ना आई ने घर है, ऊन
0: हाँ
1: बचाई लेंगे तीजो।
0: फिर संज कदे बेले आई ताली जे धुप्पा थोड़ा गड़ौन होया, मैं ले घर दे काम जे सब पाए मठे तौले हुंदे रहने ना, कने बीमार पे तो कुसी नहीं दिखने भी।
1: हाँ तो दे है पेड़ी धुप्पा च बाहर निकलना तो बड़ी हफायती ने निकलना, कने नंगे पैर नहीं जाना, चप्पल या जूते जी ऐसे पहनी के बाहर निकलना, उन्हें बच्चे होंगे ना छोटे छोटे तिना जो नहीं होंगे पता गर्मिया कने सर्दिया का, से
0: और
1: बाहर खेलना जा दे ते तिंगे नंगे पैर दौड़े हो फिर बाद च होंगे से असर।
0: हाँ कने दिख अगर बाहर भी जा दे आहे बच्चे कने बुजुर्ग लेने कुती एमरजेंसी जाना भी पवा दा, तो कदी भी गड्डिया च जी ऐसे बुजुर्ग कने बच्चे जे ऐसे कल्ले नहीं छड़ने भी आना, क्योंकि कई बार खिड़कियां जे ऐसे बंद हो जांदियां भी आन, कने स्याणे कने स्याणे जो खोड़ना नहीं आंदियां भी आन, तो कोई भी दुर्घटना जे ऐसे हो सकती अगर कुती ओ नहीं आ दे तो तुआरने तिना जो अपने सौगी जी ऐसे नहीं आए या खुल गया जगह पर कुती छोइया बठाली दिया।
1: हाँ ये दसी बड़े कम्मा दी गाल ना गुलाबो पे दे दे, हाँ फिर बड़ियां गल्ला सुन दे ना पे कुछ की दे।

0: या तो इन चीजों का थोड़ा जहा ध्यान रखना, कने तेज धुप्पा च काम करने ते जी से बचना, बीच बीच जी छौं होंगी ना ताली जी काम कर लिया, कने अगर बड़ा ही जरूरी है पे हाँ कोई काम कार दिया है ना
1: हाँ
0: उन ताली भी थोड़ी देर छौं च बैठी है आराम कर लिया।
1: हाँ तो अं भी आराम करने बैठी थी ना, कने दे नींबू पानी दे दे होना ना, जरा राखी खुड़िया आई तो अं भी घर खा दिखदी कम
0: हाँ
1: कार
0: ले
1: जाई।
0: ले पीस नींबू पानी।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
4: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
3: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
4: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:42 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

जंगल बचेंगे, बादल आएंगे, खुशहाली के गीत सुनाएंगे। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, जंगलों को आग से दूर बनाओ।

پول. نہ جلاؤ جنگل کی جان، یہ پرکرتی کی اصلی شان.

0: जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की समृद्ध बोलियों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी, पहले चरण का चुनाव 26 मई को और आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसलों की भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस बीच भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि युवा रोजगार सृजन में केंद्र की मोदी सरकार ने 12 सालों में नया इतिहास रचा है। अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि रोजगार मेला युवा रोजगार के प्रति मोदी सरकार की बेजोड़ प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का कार्यकाल युवाओं को रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता देने वाली सरकार के रूप में याद किया जाएगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की समृद्ध बोलियों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल ने आज लोक भवन शिमला में उनसे भेंट करने आए वरिष्ठ लेखक डॉक्टर ओपी शर्मा से बातचीत में कहा कि प्रदेश की विभिन्न स्थानीय बोलियां यहां की पहचान, परंपराओं और लोगों की सामूहिक संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। इन बोलियों का साहित्यिक और लिखित माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी रहें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कहा कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी से इस चुनौती का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जहां अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कस रही है, वहीं नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के चिट्टा मुक्त अभियान के साथ अभी तक राज्य में 2,34,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस चिट्टे के खिलाफ 5 जून को शिमला में एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन करेगी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने शिमला में कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और आमजन को नशे के विरुद्ध एकजुट करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति

0: जागरूक करना है। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिनों में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। ये वृद्धि ईरान संघर्ष और हॉर्मुज में व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और एक निजी कंपनी कॉस्मो फेराइट्स लिमिटेड के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये MOU ग्रीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के क्षेत्र में शोध और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने इसे हिमालयी क्षेत्र में ग्रीन टेक्नोलॉजी शोध की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
1: हो रहा है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में और कॉस्मो फेराइट के बीच, ये एक हिस्टोरिकल है, एक रियल एकेडमिया इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन हो रही है MOU के माध्यम से, क्योंकि कॉस्मो फेराइट एक ऐसा चुंबकीय पदार्थ है, मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो जैसे कि हमारा ग्रीन एनर्जी सेंटर है यहाँ विश्वविद्यालय में, उस दिशा में ये जो MOU बहुत कारगर होगा।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने इस टिप्पणी के समर्थन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रोफेसर सिकंदर ने कहा कि विपक्ष की अभद्र टिप्पणी से लोकतांत्रिक परंपराओं पर गहरा आघात हुआ है। प्रदेश में 3 चरणों में 26, 28 व 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन 3 चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। वहीं चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा बीते रोज मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। इस संबंध में आज भाजपा के चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक JC शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को चुनाव आचार संहिता की भावना के विपरीत करार दिया। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से इस मामले में तुरंत सरकार के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा शिमला जिला अध्यक्ष केशव चौहान भी शामिल थे। प्रदेश भाजपा मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार के जन विरोधी फैसलों के कारण हिमाचल देश का सबसे महंगा राज्य बन गया है। कर्ण नंदा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वायदे पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब पहले से मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली को बंद कर दिया गया है। यही नहीं, बिजली के दाम लगभग 5.5 रुपये प्रति यूनिट वसूले जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की।
2: सरकार अपने जन विरोधी निर्णय लेने में पीछे नहीं है और एक के बाद एक प्रदेश में बिजली बिलों के झटके यह कांग्रेस सरकार आम जनता को दे रही है। सरकार जब सत्ता में आई प्रदेश में यह लोग 300 यूनिट बिजली देने की बात की थी और वो भी मुफ्त की। हिमाचल प्रदेश में मुफ्त बिजली तो गॉन, पर एक यूनिट बिजली भी अगर किसी की चलती है तो उस पर भी पैसा देना पड़ेगा। अगर 0 से 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त मिल रही थी, अब उसके ऊपर 5.44 रुपए वो प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आ रहा है।
0: प्रदेशवासियों को एक बार फिर जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 26 व 27 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर सहित राज्य के 6 जिलों के अलग अलग स्थानों पर हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार 25 मई तक राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। विभाग ने इस दौरान प्रदेश के शिमला सहित मध्यम व ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है। इस बीच बीते रोज राज्य के अधिकांश स्थानों पर हुई वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी से प्रदेशवासियों को चिलचिलाती गर्मी

0: से हल्की राहत मिली है। आज भी राजधानी शिमला और जिला के ऊपरी इलाकों में हल्की वर्षा हुई। इस दौरान कुमारसेन और कोटगढ़ के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी सूचना है। राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों में समय पर वेतन न मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज निगम के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर चालक परिचालक यूनियन के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर 1 जून तक निगम के कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन नहीं आया तो कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। वर्कशॉप कर्मचारियों ने भी वेतन न मिलने पर टूल डाउन की चेतावनी दी है।
1: अन्य कर्मचारियों की तरह एचआरटीसी का कर्मचारी भी चाहता है कि उन्हें भी 1 तारीख को सैलरी मिले, लेकिन कर्मचारी को कभी समय से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया है कि यदि 1 तारीख साय 5 बजे तक कर्मचारियों का वेतन उनके खातों में नहीं डाला गया तो रात 12 बजे से सभी लोग जो है अपना कार्य बंद कर देंगे और जब तक हमारी सैलरी हमारे खातों में नहीं डल जाती तब तक हम कार्य नहीं करेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की समृद्ध बोलियों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। पहले चरण का चुनाव 26 मई को और आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसलों की भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: जल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आग नहीं हरियाली चुनो, प्रकृति से अपना रिश्ता बुनो।

जंगलों का रखो ध्यान, यही है जीवन का सम्मान। वन बचेंगे, जल बचेगा, तभी हमारा कल सजेगा।

जागरूक बनो, संदेश फैलाओ, जंगलों को आग से बचाओ। हर पेड़ की एक पुकार, आग से करना इनका बचाव। हरा भरा हो देश हमारा, जंगल बचाना धर्म हमारा। आइए हम सब संकल्प लें, ना जंगल में आग लगाएंगे, ना किसी को आग लगाने देंगे।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं, अब से लेकर 8:45 तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ, पत्नी का पत्र। इस कहानी का चौथा और अंतिम भाग लीजिए आज प्रस्तुत है, वाचन स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का।

दोस्तों, पिछले हफ्तों में आपने सुना, बिंदु का रंग काला होने से उसके विवाह में अड़चनें आती हैं, लेकिन एक पागल व्यक्ति से उसका विवाह तय हो जाता है। बिंदु कतई नहीं चाहती शादी करना, लेकिन उसकी शादी एक पागल व्यक्ति से हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो मृणाल के घर वापस शरण लेती है, लेकिन उसके ससुराल से उसके जेठ आते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं। अब आगे। मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलेंटियरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में लगातार दो बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद, जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा, वो भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। शरद के साथ बातचीत कर रही थी, तभी तुमने मेरे कमरे में आकर कहा, तुम फिर ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूं, जब से तुम्हारे घर आई हूं। लेकिन नहीं, वो तो तुम्ही लोगों की कीर्ति है ना। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या तुमने? मैंने कहा था, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर छिपा कर रख लेती, लेकिन वो अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नज़र है, अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसीलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुप गया। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर उसने मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अब भी उनके मन से नहीं गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा, मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति ये श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा था। वो बोला, डर की कोई बात नहीं जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला चलूंगा, इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद, शायद कोई रास्ता नहीं निकला? वो बोला, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, जी जी अब ज़रूरत भी नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वो आत्महत्या करके मर गई। चलो छुट्टी मिले। बिंदु। गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगाकर मर जाना तो अब एक फैशन सा हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है,
ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी ये नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया बिंदु। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। जीजी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है। अगर बची रहती तो न जाने क्या क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूं, बिंदु के आने की तो जरूरत ही न रही, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं वो तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने की बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। इसलिए मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण ये नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर नहीं जाऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूँ। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है ये मैं पा चुकी हूँ। अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि वो लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना ही जोर क्यों न रहा हो, वो उसका अंत नहीं था। वो अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबा कर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है, अपनी मृत्यु में वो महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वहां वो अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई वाण बिंध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, भगवान इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है वही सबसे अधिक कठिन क्यों है। इस गली में चार दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में ये जो तुच्छतम बुदबुद है वो इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया। तुम्हारा संसार अपनी षठ नीतियों से क्षुधा पात्र को संभाले, कितना ही क्यों न कोई पुकारे, मैं उस अंतापुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों नहीं कर सकी। ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में ही तिल तिल कर क्यों मरना होगा भला, क्यों। कितनी तुच्छ है ये मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा, इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कुछ कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नागपाश बंधन की जीत होगी। और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की, इस सृष्टि की हार। लेकिन मृत्यु की बंसी बजने लगी,
कहाँ गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वो दीवार, कहाँ गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा वो कांटों का घेरा। कौन सा है वो दुख, कौन सा है वो अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है। ये लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। तरी मछली बहू तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। मछली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न होते एक निमेश भी नहीं लगा। तुम्हारी गली का अब मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने मुझे अब तक ढक के रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की अपने मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वो आवरण उघाड़ दिया। आज बाहर आकर देखती हूँ, अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा ये अनाहत रूप जिनकी आंखों को भाया है, वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मछली बहू की खैर नहीं। तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रही हूँ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीराबाई भी तो मेरी ही तरह नारी थी, उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। मीराबाई ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े माँ छोड़े जहाँ कहीं भी जो भी हैं सब छोड़े, लेकिन मीरा की लगन वही रहेगी प्रभु। अब जो होना है सो ये लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूंगी, मैं बच गई हूँ, जीवित रहूंगी। तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी हुई मैं जीवित रहूंगी।

सुनो कहानी में इन दिनों आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ, पत्नी का पत्र। इस कहानी का ये था चौथा और अंतिम भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सूबेदार से, आवाज़ जी डी कौर की थी। गीत के बोल यंगवीर, रोहिताश और गैक्सिनिया की थी। संगीत ऋत्विक और शाइन और राज मावेर का था।

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म ओ रोमियो से। आवाज़ें सुखविंदर सिंह, रेखा भारद्वाज की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत विशाल भारद्वाज का।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: समय एक छोटे से अंतराल का, शेष कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा 2 द रूल से। आवाज़ जावेद अली और मधुबंती बागची की थी। गीत के बोल रकीब आलम, सिजू थरवूर के थे। संगीत देवीश्री प्रसाद का था।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे सुनिएगा News@9।
1: चार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई, हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047 जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड

0: ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: छाया गीत लग जागने। हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज OTT की क्वीन कहलाती है, वो है शेफाली शाह।

बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थीं। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। साल 2000 में उन्होंने निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की, जिनके साथ उनके दो बेटे आर्यमन और मौर्य हैं।

0: ना हो।
1: शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10 वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमेन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गुजराती रंगमंच में काम करके अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दे दिया था।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।

फिल्म सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका मिली।

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई पुरस्कार

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं।

इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती है।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्याले की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आईं। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घायवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कंवल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

शेफाली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, शेफाली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में शेफाली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत के रीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी। ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंगे गजल।

रंगे गज़ल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं नरेश चंदेल। आज की इस महफिल में हम लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा गज़लें जो अल्फाज की खूबसूरती और एहसासों की गहराइयों से दिलों को छू जाएंगी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में इस गज़ल से।

प्यार, एहसास और दिल की बातों को अगर शब्द मिल जाएं तो वो गज़ल बन जाती है। मोहब्बत और नज़ाकत के नाम पर अगली गज़ल है अशोक खोसला के स्वर पर।

आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंगी गजल। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति चंदन दास के स्वर में।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें। चांदनी रातें कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नरेश चंदेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, चांदनी रात में जब खामोशी गुनगुनाती है, दिल की हर बात खुद ब खुद मुस्कुराती है, मोहब्बत कोई शोर नहीं करती जनाब, ये तो चुपके से दिलों में घर बनाती है।

चांद आसमान में हो तो रात निखर जाती है, दिल में मोहब्बत हो तो बात संवर जाती है। इश्क का रंग सादा सा होता है, पर इसकी खुशबू उम्र भर साथ निभाती है।

ना सितारों से शिकायत ना चांद से गिला, मोहब्बत का सफ़र हो तो हर मौसम लगे भला। दिल की दुनिया में बस इतनी सी रोशनी रहे, हर रिश्ता प्यार से सजा और हर लम्हा खिला खिला।

चांदनी रात कह रही है धीरे से आज, दिल की किताब में लिख दो कोई मीठा सा राज। इश्क अगर सच्चा हो तो शब्द कम पड़ जाते हैं और एहसास ही बन जाती है आवाज़।

रात की चादर, चांद का पहरा और गीतों का प्यारा सा बसेरा। मोहब्बत अगर दिल में सच्ची हो तो हर मौसम लगे सुनहरा।

दोस्तों, इसी गीत के साथ अब आज का कार्यक्रम चांदनी रातें यहीं पर संपन्न हो रहा है। रात्रि के 11 बजने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा और संरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुकोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न हो रही है। प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।